0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज जी ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसी का क्यों बना मैं किसी को क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे को ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तुही दो मैनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इस शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जदों गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है, लक्ष्मी तोट ना आवई। लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्ना नू जिहड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणां च बैठे हुए ने। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसी ना, जे लड़ाइया हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हाँ, महाराज दे चरणी आ गए हाँ। तो जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे महाराज, तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है ते साडे भी प्यारे ने, है ना। कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हाँ, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मुँह छंद। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वो दस रहे ने महाराज जी।

ने सिमरन ही काम आना ये जो हूँ तुम सिमरन कर रहे हो ना सारे कट्ठे होके जो ते औखी घड़ी आनी है कोई मुसीबत आनी है कोई दुख माड़े समा आना माड़ा दिन आने ने यह सिमरन काम आना उदो तुम इन्हें जान बचा है सिमरन ने सत

0: पूछी
1: जा हर बख्शंदा, जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, मैं रब तेनू ता मनना।

भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पिया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां महाराज कहंदे मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदों सुख मिलता है, उदों आनंद मिलता। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, जो गुरु मिल जाता है आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति ते महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जो तेनू पा गया, मैं तेरा बन जा तेनू मैं पा गया, सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुही महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे? कहो महाराज जी अहीं की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसे दी फिक्र नहीं।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sarvar School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: राम राम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता हूं, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पढ़ाने का जब जिक्र हो ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक छवि बन जाती है कि कोई हमारे साथ मेंटर जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। तो चलिए मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता, लेकिन और भी बहुत कुछ क्वालिटीज हैं उनके पास, जैसे कि वो 3 बुक्स उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में टॉप 10 में आप रह चुकी हैं, और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच गगन जी फॉर हैविंग मी हियर।
0: ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है, और अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मैंने आपके बारे में तारुफ कराया है अपने लिसनर्स को, मुझे लग रहा है कहीं कम तो नहीं है या कुछ और आपने छुपा के रखा हुआ?
1: गगन जी ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, बट एट द सेम टाइम यही मैं शेयर करना चाहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से अपनी चीजों को चाहा है और इस शिद्दत ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है।
0: Great.
1: और कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये सब। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, उसमें गाना गाना, उसमें शोज करना, उसमें पढ़ाई करना, उसमें फर्स्ट आगे दिखाना, उसमें रोल मॉडल बनना दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ मैंने करके बहुत ही तरीके से देखा, अंदर घुस के देखा कि वाकई जन्नतें होती क्या हैं।
0: एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये जो सफर आपका रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब आपको लगा कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कब आपको लगा कि मुझे राइटिंग में जाना है, बुक्स लिखनी है?
1: छोटे होते से बड़ा अरमान था कि मैं सर्जन बनूं। तो तब डॉक्टर खेला करते थे, छोटे थे, 11th 12th में मेडिकल लेने की कोशिश की, बट हालात ऐसे बने कि कॉमर्स ली। उसके बाद कॉलेज करने वाले थे, कॉलेज करे तो उसके बाद लगा कि नहीं अब कुछ अपना शुरू करते हैं, या क्योंकि हमेशा से ये जरूर था कि प्रिया सचदेवा से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं अभी 10 ईयर्स रुकते हैं, 10 ईयर्स रुकना पड़ेगा, मेडिकल लाइन बहुत ही, यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और आज आप सबके सामने ही है। करते करते करते करते उसमें बस लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे गुरुओं का हाथ मिला और बहुत आशीर्वाद रहे साथ में। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज की तहे दिल से चाह होती है तो आपके सामने गुरु अपने आप आ जाता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और बहुत अच्छे गुरुओं ने मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छी गाइडेंस में यहाँ तक पहुँचाया है।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन सकते हैं तो उनको और जितने लोगों ने प्यार दिया और अपना साथ दिया, रातों को जाग जाग के वो पढ़ाइयां की हैं जहाँ तक अब आज हम पहुँचे हैं।
0: नाइस नाइस। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से आपका सामना रोज रहता है, तो आपके सामने जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लिसनर्स सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम में आपका अपना वही बिंदास। सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10। जब अच्छा लगता है सुनकर ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे उनके पास गुण हैं और खासकर जब चर्चा होती है तो वो सारी बातें खुलकर आती हैं कि ये इस फील्ड में मैंने हाथ आजमाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने बुक भी मेरी पब्लिश रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया सचदेवा मैं आपको बताना चाहूंगा, लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 के टॉप 10 में रह चुकी हैं, 3 बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया आपसे बात हो रही थी कि जो एक संबंध है गुरु का और शिष्य का, जो तालमेल है आपके साथ बहुत अच्छा रहा, आपका किस तरीके से तालमेल रहता है आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ?
1: गगन जी, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुकी थी तो दूसरी करने में यूनिवर्सिटी गई थी, तो तब मैंने सोचा था रेगुलर करूंगी। तो जब वो ज्वाइन करी तो उसमें भगवान की दया से 100 में से सिर्फ एक ही नंबर कम था। तो जब वो ज्वाइन किया और वहां पर ऐसे हुआ तो यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई, तो तब लेक्चरर अपॉइंट हुआ करते थे जमाना पहले, तब प्रोफेसर्स और इतना एडवांस स्टेट नहीं था, तो वहां पर शुरू किया अपना करियर। तो वहां पर करते करते फैशन शोज में जाना शुरू किया एज अ फैकल्टी। वहां पर जबरदस्त शूटिंग होती थी तो लगता था शायद बच्चे वैसे ही शोर मचाते हैं। तो करते करते करते करते मुलाकात होने लगी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप मॉडलिंग करो, आप यहाँ आओ, आप हमारे एक एक दो दो दिन के वो जो शूट्स होते हैं उनमें आके आप वो करो, सिर्फ अपना पिक्चर्स शेयर कर दो या फिर आप एक छोटा सा एक्ट कर दो। तो फिर एक सीरियल भी मुझे मिला इंदिरा का।
0: Nice.
1: तो लेकिन वो मैं कर नहीं पाई उस टाइम पे भी क्योंकि शायद भगवान को मेरे लिए टीचिंग ही बढ़िया लगी।
0: Nice.
1: उसके बाद करते करते फैशन शोज करे तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में सेलेक्ट हो गई, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो गई, मिसेज यूनिवर्स में सेलेक्ट हो गई, फिर फाइनली जो मैंने किया वो मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन था क्योंकि सबकी डेट्स एक साथ में थी।
0: Okay. किसी एक का चुनाव करना था, राइट?
1: तो वो किया, उसमें टॉप 10 में थी जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल थे और उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा,
0: एक्सपोजर मिला।
1: और उसके बाद अब फिर उसके बाद 3 किताबें अपनी मैंने लॉन्च की और पढ़ते पढ़ाते करते कराते बहुत अच्छा संगम रहा नई नई चीजों का और पढ़ाई का।
0: अच्छा डॉक्टर प्रिया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्कूल है ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं मॉडलिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई एंकर बनता है, कोई आरजे बनता है, चूंकि आप ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं और आपने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, तो किन किन चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और वो आप हमारे लिसनर्स को बताइए ना प्लीज।
1: ऐसा होता है गगन जी, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग होती है, बड़ी इल्यूजनरी होती है, हमें लगता है कि हम यहाँ आकर पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंदगी कुछ और है।
0: राइट राइट।
1: लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो अगर आपकी अगर आपके अरमानों में चाहत में इतनी शिद्दत है तो आप आरजे हो या आप कोई एक्टर हो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता।
0: बहुत खूबसूरत।
1: तो जिस एक्सटेंड तक आप मेहनत करेंगे जिस भी एस्पेक्ट में मीडिया की, तो ऑब्वियसली आपको उसमें
0: रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे
1: और जब मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको इंटरेस्ट देंगी, आपको बढ़ाएंगी और आपको जिताएंगी।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। लिसनर्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, चाह रखना बहुत जरूरी है और जहाँ चाह होती है तो ईश्वर की दुआएं, शुभकामनाएं, बड़े बुजुर्गों का साथ, दोस्तों का प्यार, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम बहुत सुखद होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं। और अपने ऊपर तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा कि मुझे आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा जुड़ी हुई हैं।
1: मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली में की तो आप सोच भी नहीं सकते, आई वॉज टू फैट। आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 75 kg ऑफ वेट. नो वन कैन थिंक ऑफ बींग अ मॉडल एट दैट स्टेज बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी. पर उसके बाद भी इतनी मेहनत करके आई गॉट इन फर्स्ट 10. दैट वॉज एन अचीवमेंट.
0: एक्सीलेंट, एक्सीलेंट.
1: सो इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू सी इट वॉज अ हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क विच एक्चुअली पेज.
0: राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो लिसनर्स, मैं भी वही बात कह रहा था. इस बात का सार यही निकल कर आता है कि अपने ऊपर अगर आप वर्क करेंगे या अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं जाएगा मत. स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो श्रद्धा 90.8 FM. प्रोग्राम है आपका अपना वही बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: मैम, आपसे मेरी जो बातें हो रही थी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये सच है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोग आपका इम्तिहान लेते हैं, और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूं कि दिक्कतें परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बुक्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए कि आपने जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, आपकी तीन बुक्स, जैसे कि आपने हमें बताया, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिवनेस, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये टॉपिक आए कि मुझे ये लिखना है, और क्या अभी आप कर रहे हैं बुक्स के रिगार्डिंग?
1: मैंने जब अपनी PhD कंप्लीट की तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरे पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से उस चीज को हासिल किया। चैलेंज ये था कि उस टाइम अगेन थोड़ा सा फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से एकदम से वापस जॉइनिंग बैक नहीं कर सकती थी। तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया, इंस्टेड के मैं उस टाइम को ऐसे वेस्ट कर देती, मैंने उस दौरान 6 महीने में मैंने 3 किताबें लिखी, और मैंने वो तीन किताबें
0: में 3 किताबें, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा टास्क, और इतने आसानी से ये कैसे कर पाई? अनुभव की वजह से?
1: अनुभव भी और काफी मेहनत और चाहती, फिर यही कहूंगी, चाह बहुत थी कि ऑथरशिप हो, अपनी हो। तो जब सबको देखा करती थी, गुरुओं को, कि उनकी किताबें छप रही हैं, तो दिल करता था कि अपनी भी हो। तो जब अपना लिखना शुरू किया तो सारे वो लेटेस्ट चीजें जो आने वाले समय में बच्चों को फायदा देंगी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी एक लाइन है जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो बच्चों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजिंग की किताब लिखी थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में ये जो एड्स हैं ये क्या उनके लिए लेकर आएंगी और किस तरह की हो जाएंगी वो।
0: मतलब समझा नहीं, क्या लेकर आएंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं आप या नजरिया
1: की बात? 10 साल के बाद इसका नजरिया उनके लिए क्या होगा? तो जो पर्सपेक्टिव्स आज से 10 साल के बाद वो सोचेंगे, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ से अपनी बुक में रखूं। अब जैसे हमारे जो ये बच्चे हैं, ये मिलेनियल्स हैं, तो अब इनके क्या शौक हैं, क्या ढंग हैं, ये गैजेट्स के साथ पैदा हुए हैं, गैजेट्स ही यूज करते हैं, जबकि हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी। तो आज आने वाले टाइम में ये जो नया मीडिया है ये उसको कैसे चेंज कर देगा, और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे, और किस आसानी से वो अडॉप्शन कर पाएंगे उन चीजों का, ये सब मैंने अपनी किताबों में।
0: बहुत खूबसूरत। जितना मैं आपसे बात कर पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है या इस पे एक और चर्चा हो सकती है आपके साथ। वाकई रियली नाइस टॉक टू यू डॉक्टर। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस के बारे में आप मुझे बता रहे थे, और मैं ये जानना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को फिट रख सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, और आपका फिटनेस का जो राज है वो देख के लगता नहीं कि, बस आप मुझे यही बता ही दीजिए कि फिटनेस का राज क्या है।
1: मैं तो यही कहूंगी गगन जी कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप व्यायाम करते हैं, रोज करते हैं, तभी भी कई लोग होते हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते, उनको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस एक चीज के ऊपर होता है। आपको अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, सब चीजें एक साथ में देखनी होती हैं। तो अगर आप अपने डाइट कंट्रोल्स कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं, एक्सरसाइज के साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर आप पर्सनल बैलेंस नहीं लेके चल रहे, सिर्फ वर्कहोलिक हो, तब भी दिक्कत है, क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है ये सब बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस, और आप अपने जिमिंग्स पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देंगे, तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी बेटर फिट होंगे।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, कहने का मतलब यही है कि इस बात का अगर हम सार निकालें तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, रही है, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो, खेलने की बात हो, फिटनेस की बात हो। अति अगर किसी चीज की हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, आप कहीं जाएगा मत। बहुत ही खूबसूरत गाना है कुड़ी मैनू कहंदी, हार्डी संधू की आवाज में ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं, जो कि मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में आपने पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 तक आप पहुंची, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। सो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपकी बातों में मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इंसान को जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर आपने कोई कंपटीशन जीत भी लिया है और आपके जो जज्बात हैं वो काबू में हैं, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कहते ना कि छोटी सी ख्वाहिशें अगर इंसान की पूरी हो जाती है तो वो फैल जाता है, आम भाषा में अगर हम इस बात को ऐसे रखें। तो साथ ही साथ आपने ये भी हमें रखा कि डिस्कस किया कि गुरु और शिष्य का जो तालमेल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि, और 19 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, तो ये जो तालमेल है आपको लगता है कि पहले जैसा रहा है या कुछ और बदलेगा? कहीं ना कहीं हम सम्मान में देखते हैं कि टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं सुनते, स्टूडेंट्स के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पहले के समय को अगर हम देखें तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में हम लौट जाया करते थे, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मतलब सचितार्थ है। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय बदल चुका है और क्या बदलेगा?
1: मुझे लगता है

0: चाहे वो बच्चे हैं या चाहे बड़े हैं, हर इंसान में कुछ नायाब होता है सीखने के लिए। अगर जैसे हम गुरु हैं लेकिन कुछ चीजें हम भी बच्चों से सीखते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बच्चों ने भी काफी हद तक इतने सालों में बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत बच्चों को गाइड किया, उनकी मेंटर भी रही, उनकी उनको गाइड भी करती रही। तो मैंने यही देखा कि अगर आप बच्चों के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी सिंपल हो जाती हैं। इंस्टेड के अगर हम इम्पोज करें उनको कि ये चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें आज के टाइम में नहीं चल पाती, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में उनको चाह रहे हैं वो उसी में ही राइज करें, उनके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पॉलिश करना एक टीचर का मैं तो कहूंगी धर्म होता है, कि उनको समझना, उनकी काबिलियत को समझना और किस एस्पेक्ट में वो काबिल हैं, उनको पॉलिश करना एक मेंटर की सबसे बड़ी खूबी होती है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि लिसनर से तालमेल होना बहुत जरूरी है, ट्यूनिंग अगर आपकी जबरदस्त है आपके टीचर के साथ, टीचर की आपके साथ, तो निश्चित तौर पर जो आपके काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मसलन चाहे वो नंबर की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, कुछ भी कोई बात क्यों ना हो, कभी कभी टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के सजेशन भी आप उनसे मांग रहे होते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज आप मुझे गाइड करिए।
0: मुझे तो ऐसा लगता है गगन जी कि शायद बच्चों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाती है, क्योंकि आप उनके साथ माने ना माने कहीं ना कहीं उनकी कुछ सीखें जो उन्होंने इम्बाइब करी या आपने उनसे ली, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी भर चलती हैं।
1: बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब हम ना समझ होते हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमें वो टीचर याद आते हैं, हमें वो टीचर वाले जो दोस्त हैं वो याद आते हैं कि यार सर या मैडम हमें बहुत अच्छी वो गाइडेंस दिया करती थी, हमें बताया करती थी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो खैर डॉक्टर प्रिया सचदेवा आप हमारे स्टूडियो आई, आपने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तो खुद पर यकीन कर।
1: यकीन कर, यकीन कर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि खुद पर और खुदा पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी जरूर। और जिस तरीके से मैडम ने जो बात कही, एक अनुभव के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी है, आप कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
1: सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ऐसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं, 26 तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जानेंगे जरूर। बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में, बात करेंगे मौसम के मिजाज के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में 9:20 हो चुके हैं। 26 तारीख है, बोले तो 26 मई। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि मौसम का जो मिजाज है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ऐसे समय में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, पशु पक्षी जानवरों का ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रात को भी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। सोचिए ऐसे समय में कि लाइट की कटौती हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है, और जिसकी वजह से समस्या बहुत हमारे सामने आ रही है। और जब सुबह सुबह आप वॉशरूम में जाते हैं बिना गर्म किए पानी मिलता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलेगा, तन बदन को ढककर निकलेगा। अरे ढक्कर नहीं होता, ढक्कर, हाँ ढक्कर निकलेगा। और इसके अलावा मॉनसून कब आ रहा है उसके बारे में, हाँ शून शून कम कम शून शून, हाँ कम सून जल्दी आए। लेकिन अपडेट हमारे निकल के सामने ये आ रही कि केरल में समय से पहले 26 मई के आसपास दस्तक दे सकता है मॉनसून। और मॉनसून केरल पहुंचने में 5 से 6 दिन का समय लग सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। मॉनसून अपने निर्धारित 1 जून के आसपास ही केरल में आ सकता है, दस्तक दे सकता है। और फिलहाल पेट्रोल डीजल की जो मार है उसकी वजह से दिक्कत परेशानी हमारे सामने आ रही है, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में धैर्य रखिए, समझदारी से काम लीजिए। आपका फर्ज बनता है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो ज़रूर उसको प्रेषित न करेगा। ये क्या होता है प्रेषित, मतलब आगे सेंड ना करें। अच्छा ऐसे आ रहे थे। Beautiful track, all your Suroshada 90.8 FM पर। Good morning, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ। धुरंधर फिल्म का धुरंधर गाना, क्या बात है।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: इसका अर्थ ये है कि हम यहाँ हैं, तुम कहाँ हो?
0: बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ हैं, तुम कहाँ हो? The world is here at Sharda University. जी हाँ, भागदौड़ शुरू हो रही है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जाने की। यानी कि कॉलेज आपने पास कर लिया है, उसके बाद भागदौड़ शुरू हो रही है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा विश्वविद्यालय मेरे लिए सही रहेगा जहाँ से मुझे बड़ी सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिल सकती हैं। पढ़ने पढ़ाने की बातें हों, जिंदगी को जीने की बातें हों, करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हों, प्लेसमेंट हो, बहुत कुछ। इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप शारदा विश्वविद्यालय आएंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आप अपनी तैयारी के साथ आएगा, बहुत सारे सवाल करेगा और हर सवाल जवाब देने के लिए हमारे यहां एक्सपर्ट मौजूद है। और जब आप यहां आएंगे तो यकीन मानिए कि आप यहीं के होकर रह जाएंगे। एक छत के नीचे बहुत कुछ आपको मिलता है। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया था कि ब्रेक के इस पार आएंगे तो हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बारे में और सीएनजी पीएनजी के बारे में। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि विश्व में वर्ल्ड लेवल पर युद्ध छिड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसके अलावा हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, भारत सरकार कुछ कह रही है, तो हमें कदम से कदम मिलाकर चलने की बहुत जरूरत है। 12 दिनों में हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के 7 रुपये दाम बढ़े, सीएनजी के 6 रुपये दाम बढ़े। तो इस तरीके से इसका जो फर्क पड़ेगा हमारी जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा, है ना? आमदनी अठन्नी, अगर खर्चा रुपया है तो उसके बारे में हमें सोचना होगा कि किस तरीके से अपनी बचत के साथ हम आगे बढ़ें। अदरवाइज दिक्कतें परेशानियां शायद बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी समाधान भी हो, लेकिन लेकिन लेकिन बहुत धीरज से, समझदारी से आगे बढ़ेगा। और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ऐसी गर्मी में ये खूबसूरत गाने तो सुकून देते हैं ना, भीगी सी भागी सी, फ्रॉम द मूवी राजनीति। और इस गाने को आवाज दे रहे हैं अंतरा मित्रा, मोहित चौहान। सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भाई सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मस्ती कमाल धमाल के साथ जबरदस्त इंफोटेनमेंट के साथ मैं रहता हूँ आपके साथ, मतलब रेडियो रहता है आपके साथ, और वैसे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। चलिए, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं तो 0120 बोले तो 120 शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा। 4060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी मुलाकात करना चाहें तो शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गर्मी के मौसम में पानी को हम स्टोर करते हैं टंकी में। अगर आपकी टंकी काले रंग की है तो हम सब जानते हैं कि काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब क्या करें कि जिसकी वजह से पानी कम से कम ठंडा ठंडा कूल कूल तो रहे। एक्सपर्ट कहते हैं कि एल्यूमिनियम फॉयल लगाने से, जो चमकदार एल्यूमिनियम फॉयल होती है ना, थोड़ी सी राहत तो मिलती है। धूप की किरणों को काफ़ी हद तक वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है, और इस वजह से कुछ लोग इसे टंकी पर लपेटने या यूँ कहें कि टंकी ढकने का तरीका अपना भी रहे, ताकि धूप सीधे उस पर ना पड़े और पानी कम से कम गर्म हो, और कई लोग इसका फायदा भी बता रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जब मैंने इस खबर को पढ़ा, इसके तथ्यों को पढ़ा, इसकी जानकारी सटीक है या नहीं ये भी मैंने जाना, तभी मैं आपके सामने बात लेकर आ रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा आप अपनी टंकी पर शेड लगा सकते हैं, काली की जगह कोई दूसरे रंग की टंकी को आप ले सकते हैं, और सुबह या रात में पानी को आप स्टोर करें। कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही मत बरतिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता, उनको सलाम करते हैं हम, उनकी प्रतिभा का लोहा आज तक माना जाता है, लेकिन उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यारी गगन के साथ।

0: पेंशन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना नेहा कक्कर की आवाज में। इस गाने के जो बोल हैं सोना ही नहीं, ज्यादा ना बनिया कर, क्या बात है। आप ज्यादा ना इतराइए क्योंकि हम आपसे बेपरवाह मोहब्बत करते हैं या करती हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। चलिए जनाब, मोहब्बत कर लीजिए, अपने आप से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए। जब हम अपने आसपास प्यार रखेंगे तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि आप अपनी गाड़ी को उस जगह पार्क करते हैं जहां एक बड़ा वृक्ष है, आप वहां सुस्ताना चाहते हैं जहां वृक्ष है, लेकिन वो वृक्ष आपने लगाया तो नहीं कभी जीवन में। एक नेक काम करिए, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए और उस पौधे को बड़ा होने में भी आपका ये योगदान होना चाहिए, ताकि आपको बड़ी खुशी मिले कि मेरी भी गाड़ी किसी पेड़ के नीचे पार्क होती है ना, मेरे उस पेड़ के नीचे तमाम लोग सुस्ताते हैं, यानी कि ठहराव करते हैं, उनके चेहरे पर खुशी होती है। अगर हम नेक काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नेचर भी आपका ख्याल रखेगी। चलिए, और कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। भारतीय धावक मिल्खा सिंह को हम कभी भूल नहीं सकते, उनके योगदान को हम नहीं भूल सकते। 400 मीटर दौड़ का ऐतिहासिक राष्ट्रीय रिकॉर्ड सबसे पहले 1998 में परमजीत सिंह ने तोड़ा था, जो कि पहले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया परमजीत सिंह ने। और अब हाल ही में सुनने में आ रहा है कि विशाल टिके ऐतिहासिक रिकॉर्ड को उन्होंने 44.98 सेकंड में वो नया एक रिकॉर्ड बनाया। और रांची में ये फेडरेशन कप 2026 में ये प्रतियोगिता हुई थी, वहां उन्होंने नया एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो इस बात के लिए लख लख बधाइयां, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। और आज के मैच की अगर हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2026 में प्ले ऑफ मैचों की बारी आ चुकी है। क्वालिफायर मैच आज यानी कि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाना है। मुकाबले में टॉस भारतीय समय के अनुसार शाम को 7 बजे और पहली गेंद फेंकी जाएगी शाम के 7:30 बजे। हाँ, शाम के 7:30 बजे कोई काम को ना बोलो, बस आई लव आईपीएल, आई लव टीवी। हाँ, जब कभी कभी बीबी आ जाती है बीच में तो दिक्कत हो जाती है, मतलब वो कहती है ना कि ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चुनाव करना पड़ता है टीवी की बीबी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोनों को संभालिए वरना रायता फैल सकता है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: अभी तो टीम है ना?
0: हाँ, ये टीम है, लेकिन गाना बस प्ले किया है एंजॉय के लिए।

के साथ मैं अनुमति ले रहा हूँ। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज दिल को राहत देती है। बहुत ही खूबसूरत गाना, लागी तुमसे मन की लगन। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आने वाली ईद की बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्ते दोस्तों, आज सुबह जब मैंने गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाए तो मैंने सोचा घर के खाने की बात तो कुछ और ही है। स्वाद और सेहत दोनों का मजा। चलो अब मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से, जो कि मुरली, राजू और लल्ला के साथ पकड़न पकड़ाई का खेल खेल रही है।
1: मुरली, मुझे पकड़ो।
2: मीना, तुम कितना तेज दौड़ती हो।
3: तेज दौड़ती हो, सबको पीछे छोड़ती हो।
4: मुरली, मुरली बेटा, तुमने आज आंगन के पेड़ से अमरूद तोड़े थे क्या?
1: नहीं तो माँ, क्यों?
4: कोई हमारे अमरूद चुरा रहा है मुरली, देखो तो ये पेड़।
2: अरे हाँ माँ, अब क्या करें मीना?
1: हम सब इस पेड़ के आसपास छुप जाते हैं। हाँ मुरली, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं वहाँ छत पर, और लल्ला राजू तुम दोनों पास वाले आम के पेड़ पर, ये ठीक रहेगा, ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और जो भी अमरूद चुराता है वो जरूर पकड़ा जाएगा।
0: अमरूद चोर को पकड़ने के लिए सब अपनी अपनी जगह छुप गए, लेकिन मुरली।
1: मुरली, पेड़ पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल थक गए।
2: थका थोड़ी हूँ राजू, बस ऐसे ही जरा।
0: मुरली, मीना, राजू और लल्ला चौकन्ने होकर नीचे देख रहे थे। अचानक एक लड़के ने फल तोड़ने के लिए अमरूद के पेड़ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मुरली पेड़ से उतरकर उस लड़के के पीछे भागा, लेकिन थोड़ी सी दूर भागने से ही मुरली थक गया। वो लड़का मुरली से काफी आगे निकल गया और मुरली हाँफता हुआ वापस लौट आया।
1: मुरली, तुम थोड़ा और तेज भागते तो उसे जरूर पकड़ लेते।
2: राजू, मैं तेज भागता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है।
4: कोई बात नहीं बेटा, हमने उस लड़के का चेहरा ठीक से देख लिया है, अगली बार कहीं मिला तो हम उसे पकड़ लेंगे। अब तुम मुँह हाथ धो लो, मैंने गर्मा गर्म पालक के पराठे बनाए हैं।
2: माँ, मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे पालक अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी अब मैं बहुत थक गया हूँ। मीना, राजू, लल्ला, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: और अगले दिन मीना की क्लास में।
5: देखा बच्चों, 17 का पहाड़ा कितना आसान है। मुरली, अब तुम एक सवाल का जवाब दो।
2: जी बहन जी।
5: अगर एक डिब्बे में 17 कंचे हैं, तो ऐसे 9 डिब्बों में कितने कंचे होंगे?
2: एक डिब्बा 17 कंचे, मतलब 9 डिब्बों में। बहन जी, मुझे इसका जवाब नहीं आता।
6: 17 निम्मे 153, हाँ 153 कंचे।
5: शाबाश कृष्णा। देखा मुरली, अगर तुमने क्लास में पूरा ध्यान दिया होता तो जवाब तुम भी दे सकते थे।
2: जी बहन जी।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद।
1: मुरली, वो देखो, वही लड़का जो अमरूद चुरा रहा था।
2: अरे हाँ मीना, ये तो वही लड़का है, चलो उसे पकड़ते हैं।
0: चोर मीना और मुरली को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगा। मीना बहुत तेज भागी, लेकिन तब तक चोर बस पर चढ़ गया।
2: मीना, क्या हुआ? वो लड़का कहाँ गया?
1: वो मेरे पहुँचने से पहले ही बस में चढ़ गया मुरली, लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रहे हो?
2: मीना, ना मैं पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ, और खेलने कूदने और भागने से भी जल्दी थक जाता हूँ।
1: एक बात कहूँ मुरली, मैंने कई बार देखा है, ना तुम हरी सब्जियाँ खाते हो, ना ही अंडे, और
2: वो मीना, मैं अब चलता हूँ, पिताजी को घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर बाबू को भी आज ही उनकी जांच के लिए आना था।
1: ठीक है मुरली, कल मिलते हैं।
0: और जब मुरली घर पहुँचा।
4: मुरली बेटा, डॉक्टर बाबू का कहना है कि अब तुम्हारे पिताजी का घुटना पहले से काफी बेहतर है, तुम मुँह हाथ धोकर खाना खा लो, मैंने आज पालक की सब्जी बनाई है।
1: पालक?
2: नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं।
7: क्या हुआ मुरली?
4: डॉक्टर बाबू, ये जरा सा भी भागता है तो थक जाता है, और बहन जी कहती हैं कि क्लास में भी ध्यान नहीं लगा पाता, समझ नहीं आता क्यों।
7: मुरली, जरा अपने नाखून दिखाओ। तुम्हारी आंखें भी कुछ फीकी सी लग रही हैं, तुम अपने खाने पीने का ध्यान तो रखते हो ना?
8: जी वो मैं
4: बताती हूँ डॉक्टर बाबू, ये अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जब देखो कचौड़ी, लड्डू, समोसे, बस ऐसी ही चीजें खाने की जिद करता रहता है।
7: मुरली, तुम्हें जो खाना पसंद है वो स्वादिष्ट तो होता है पर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें आयरन नहीं होता। खाने में आयरन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शरीर में ताकत कैसे आएगी?
1: आयरन? आयरन से क्या होता है डॉक्टर बाबू?
7: मुरली, आयरन से ही शरीर में खून बनता है और ताकत मिलती है, और तो और दिमाग भी तेज चलता है। अभी तो तुम्हारी बढ़ने की उम्र है, इसीलिए खूब सारी हरी सब्जियाँ, अंडे वगैरह खाया करो, इनमें आयरन होता है।
1: डॉक्टर बाबू, अगर मैं ये सब खाऊं तो क्या मैं तेज भाग सकूंगा?
7: बिल्कुल, ना तुम ऐसे थकोगे और क्लास में भी पूरा ध्यान लगाकर हर सवाल का सही जवाब दे पाओगे।
4: मुरली, पालक की सब्जी के साथ मैंने अंडे की भुर्जी भी बनाई है, खाओगे ना?
1: ढेर सारी खाऊंगा माँ।
7: शाबाश, और ये लो
1: दवाई।
7: दवाई नहीं, ये है आयरन की गोलियाँ। रोज आयरन की एक गोली खाने से धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी।
0: उस दिन से मुरली ने रोज हरी सब्जियाँ, अंडे, आयरन से भरपूर चीजें खाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद एक दिन मुरली की माँ ने उस अमरूद चोर को फिर से देखा।
2: चोर, चोर, अमरूद चोर!
1: तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ।
0: और इस बार मुरली ने उस अमरूद चोर को भाग कर झट से पकड़ लिया।
1: तो तुम ही हमारे पेड़ से अमरूद चुरा कर खाते हो?
6: मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे अमरूद कभी नहीं चुराऊंगा।
1: चुराने की जरूरत भी नहीं, अब से जब भी अमरूद खाना हो बस बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। अमरूद में आयरन जो होता है।
0: तो देखा दोस्तों, आयरन से भरा खाना अगर रोजाना खाते रहो तो ताकत भी मिलेगी और दिमाग भी तेज रहेगा। तेज दिमाग और चुस्त शरीर, यही है आयरन की शक्ति। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या कर रहे हैं।
9: इससे मिलती ताकत है चलता तेज दिमाग,
3: आयरन की शक्ति मिलते ही कमजोरी जाए भाग।
0: इस कविता का तो मजा ही कुछ और था। अब एक बढ़िया सा गाना भी हो जाए।

0: बोलो बोलो बोलो बोलो, बतलाओ।
1: मैं बताऊं दीदी।
0: हाँ हाँ बोलो मीना।
2: राज की बात बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। हरी सब्जियाँ दाल संतरा रोज में घर में खाती हूँ। राज की बात बताती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाती हूँ।

0: इस मजेदार गाने के बाद अब चलते हैं मीना की क्लास में, जहां बहन जी एक और मजेदार खेल खिलाने वाली है। चलो
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे बीच में छुपकर कौन बैठा है। आज के खेल में मैं चार पक्षियों के नाम बताऊंगी और इन्हीं चार पक्षियों में से तुम्हें एक छुपे हुए पक्षी को पहचानना है जो बाकी तीनों से अलग है। तो तैयार?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो उन पक्षियों के नाम, चील, हंस, शुतुरमुर्ग और कोयल।
3: बहन जी, छुपा हुआ पक्षी है कोयल।
1: वो क्यों दीपू?
3: क्योंकि बहन जी, कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जो गा सकता है। कू, कू, कू।
1: दीपू, कोयल की आवाज मीठी तो होती है, पर हर चिड़िया की अपनी आवाज होती है।
4: बहन जी, फिर तो वो छुपा हुआ पक्षी चील ही होगा, क्योंकि चील ही खाने के लिए शिकार करती है।
1: सुमी, चील की नज़र बहुत तेज होती है और वो अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेती है, पर कुछ हंस भी पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं।
4: बहन जी, मैं समझ गई, छुपा हुआ पक्षी है शुतुरमुर्ग।
1: शाबाश मीना। पर शुतुरमुर्ग बाकी तीन पक्षियों से अलग

0: क्यों है
1: बहन जी? शुतुरमुर्ग ही इन चारों में से एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता।
0: शाबाश मीना, बिल्कुल ठीक पहचाना।
2: बहन जी, शुतुरमुर्ग अपने पैरों पर चलते हैं, कभी बहुत तेज तो कभी बिल्कुल धीरे धीरे।
0: ठीक कहा मीना और कृष्णा। तो बच्चों, आया ना मजा?
3: बहुत।

0: से आगे। एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए
1: और डब्बा ले आ बेटा जल्दी आ स्कूल को लेट हो रहा है
2: आई पापा क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी पापा
1: क्या हो बेटिया
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं
3: वादा करता हूँ बेटिया अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए
6: बेटर लेट देन नेवर तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए
7: हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026 ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का 25th मई से 8th जून इसमें आपको पाइथन IoT साइबर सिक्योरिटी AR VR सब सिखाया जाएगा टाइमिंग रहेगी 10 से 4
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए

0: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैंपोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
1: ये कुछ विशेष प्रकार के टैंपोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
0: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
0: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ।

मित्रों, इस दुनिया में इंसान ही इंसान के काम आता है, ये आप बखूबी जानते हैं और ये अनुभव भी आपने किया होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपसी संबंधों, प्रेम और सद्भाव का मानव जीवन में काफी महत्व है। आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही छवि सामने वाले के मन में आपके प्रति बनेगी। इसीलिए दूसरों से प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, जिससे कि आपकी छवि सुशील और संस्कारी मनुष्य की बने। हम किसी से जब भी मिलें तो मुस्कुराकर ही सामने वाले का स्वागत करें। मुस्कुराहट से सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो हमारी तरफ आकर्षित होता है और वो हमसे बात करना चाहता है। आपस में बातचीत करने के दौरान व्यक्ति की वाणी में मिठास होना चाहिए। मधुर और शिष्ट आवाज से सामने वाला भी प्रभावित होता है। जरा सोचिए कि हम इस संसार में आए हैं तो क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाएंगे। सब का सब यहीं पर रह जाएगा। अतीत से अब तक हमने देखा है कि कई राजा और रंक आए और सब के सब धूल में मिल गए। कोई कुछ लेकर गया है क्या? और दूसरी तरफ एक और बात है, किसान मित्रों के जिन जिन का नाम जीवित है तो वो उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही जीवित है, ना कि उनकी धन दौलत के कारण। समाज, घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी के किसी भी पल में तो सभी चले आते जाते रहते हैं। किसान मित्रों, समाज और घर परिवार में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी का कोई भी अवसर, तो इन सब में तो सभी आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। और सामाजिकता के नाते हमें व्यक्ति का दुख बांटना चाहिए। किसी के दुख में सम्मिलित होकर दुखी परिवार को सांत्वना देना, ये कहना है कि चिंता ना करें, ईश्वर और हम आपके साथ हैं। तो जो दुखी परिवार होता है ना, उसको बहुत अपनेपन का एहसास होता है और उसका जो दुख है वो बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार हम आपसी प्रेम और सद्भाव से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश सुन रहे थे। किसान मित्रों, अक्सर आपके सामने एक समस्या जरूर आती होगी, कोई भी फसल आप करते हैं तो उसके कहीं ना कहीं अवशेष बच जाते हैं। अब उसका प्रबंधन है वो कैसे किया जाए? कम फसल होती है तो उसका तो ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई बड़ी आसानी के साथ तो उसका प्रबंधन कर देते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और भी कई तरीके हैं उस तरह से उसका प्रबंधन कर देते हैं। लेकिन आपके पास जमीन ज्यादा है, यानी कि आप फसल ज्यादा जमीन पर करते हैं, और उसके जब फसल अवशेष होते हैं तो उनका प्रबंधन करना एक सिरदर्द आपके लिए बन जाता है कि आपको उस फसल का निपटारा भी करना है, प्रबंधन भी करना है, और साथ ही साथ अगली जो फसल है उसकी तैयारी भी करनी है, तो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसे में आप आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के फसलों के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। तो उन्हीं कुछ तकनीकों के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो तकनीकी हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी फसलों के अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए कई समाधान प्रदान करती है, जिसमें रोटरी डिस्क ड्रिल जैसी मशीनों का उपयोग शामिल है, जो फसल अवशेषों को जलाने के बजाय सीधे बीज बोने में मदद करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। इसके अलावा मल्चिंग, डिकम्पोजर का उपयोग और जैव ऊर्जा रूपांतरण प्रौद्योगिकियां जैसे गैसीकरण और ब्रिकेटिंग भी अवशेषों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए, निस्तारण के लिए जो आधुनिक तकनीकियां हैं, मशीनें हैं, वो कहां पर मिलती हैं, कैसे आप इनको ले सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो मशीनें वो तो बहुत सारी महंगी हो गई, और हर किसी किसान भाई के बस में ये बात नहीं है कि वो उन मशीनों को खरीद पाए। अगर हाँ, किसान भाई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी की योजना भी चलाई जा रही है, जिसका वो लाभ ले सकते हैं। और पराली प्रबंधन है या आपकी जो फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए जो भी मशीनें आ रही हैं उनकी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आप इनको खरीद सकते हैं। अब जानकारी कहाँ पर मिले कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है और कैसे इन मशीनों को खरीदा जाए? तो सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आपके पास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाकर के आप संपर्क करिए। अब बात आती है वो हमारे किसान बहन भाई जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसलों के अवशेष प्रबंधन में करें? तो उसके लिए सरकार ने कस्टम हायर सेंटर बनाए हुए हैं, जहां पर आप कोई भी कृषि उपकरण जाकर के ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करने के बाद आप वहां पर उसको जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कृषि कार्य कर सकते हैं और अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान मित्रों, आगे आपको ये भी बताएंगे कि फसलों के अवशेष प्रबंधन से क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक रागनी, कलाकार हैं प्रियंका चौधरी, और किस्सा रहेगा गोपी चंद का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी और किस्सा था गोपी चंद का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे कि फसलों के अवशेष का प्रबंधन क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या लाभ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम फसलों के अवशेष का प्रबंधन नहीं करते हैं, अगली फसल की जल्दबाजी में हम उनको जला देते हैं, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है और उसका प्रभाव फिर हमारी फसलों पर, हमारे स्वास्थ्य पर और पता नहीं कितनी जगह पर फैलता है। तो तकनीकी तरीके से हम अपनी फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करते हैं तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए धान की पराली है, उसका प्रबंधन आप कर रहे हैं तो उसको आप चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल चीजें बनाई जा रही हैं धान की पराली से, तो वहां पर बेच करके आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपका ये भी फायदा हो जाएगा। और फसल अवशेषों का खाद के रूप में इस्तेमाल हम जब करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो किसान मित्रों, कहने का मतलब यही है कि जब आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अपने फसल के अवशेषों के प्रबंधन में करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है। और इस तकनीक में जो भी मशीनें हैं या कृषि यंत्र हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं फसलों के अवशेष प्रबंधन में, तो उनकी सारी की सारी जानकारी आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों के माध्यम से फसलों के अवशेष प्रबंधन की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

मेहरवानों, सत्यवादी हरिचंद को कालिया भंगी ने खरीद लिया 30 भार सोने में, और उधार तारावती और रोहतास को रामलाल पंडित जी ने खरीद लिया 30 भार सोने में। मेहरवानों, आज 60 भार सोना विश्वामित्र का जो कर्ज के रूप में था पटा दिया। उस मौके का जिक्र कि जब हरिश्चंद्र कालिया भंगी ने भेजा नदी पर जल भरने के लिए, और उधार तारावती रामलाल पंडित जी ने जल भरने के लिए भेजी थी। दोस्तों, आज महारानी तारावती और सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र का भंगी के रूप में और तारा का ब्राह्मणी के रूप में मिलन होता है, तो कैसे 30 दिन का भूखा हरिश्चंद्र आज अपनी पतिव्रता ब्याहता से घड़ा उठाने के लिए कह रहा है।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें। कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण।

0: मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना व उन्हें सशक्त करना, ताकि वो इससे मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सके। महिलाओं में गैर बराबरी की स्थिति का वर्णन करती आज की कहानी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: स्त्री हूँ मैं, मुझे देवी मत बनाओ, झूठी शान की बलि वेदी पर मुझे मत चढ़ाओ। सशक्त हूँ मैं, मुझे अबला मत बनाओ, हर महीने रक्तिम होना नियति है मेरी। अंधविश्वासों की जंजीरों में ना मुझे उलझाओ, उड़ना है मुझे भी उन्मुक्त गगन में, भ्रूण हत्या का पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाओ। चाहती हूँ मात्र तुमसे समर्पण मन का, देह गान की गाथा में मुझको मत उलझाओ, मुझको मत उलझाओ। औरतें घर ऑफिस या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अपनों के द्वारा घर पर ही की जाने वाली घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। जरूरी नहीं शारीरिक चोट ही हिंसा है, बल्कि किसी भी औरत को अपशब्द बोलना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी हिंसा है। कहते हैं शब्दों की मार तो शारीरिक मार से भी ज्यादा गहरी होती है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु मन पर लगे जख्मों को भरने में बहुत समय लग जाता है।
0: दुनिया भर में लैंगिक असमानता को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि हमारे समाज की संरचना की वजह से ये लैंगिक भेदभाव ज्यादा फैलता है, परंतु बेटे की चाह में औरत को दिया जाने वाला मानसिक दबाव और प्रताड़ना सच में हमारे सभ्य समाज का एक शर्मनाक पहलू है। आइए आपको ले चलते हैं बिमला जी के घर, जहां उनकी बहू नेहा गर्भवती है

0: नेहा, अरे ओ नेहा, सुनती क्यों नहीं हो तुम? नेहा,
1: क्या हुआ मम्मी जी?
0: कहाँ थी तुम?
1: मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी।
0: बस पूरा दिन आराम आराम आराम, जीना हराम करके रख दिया है हमारा।
1: लेकिन मम्मी जी, आराम नहीं करूंगी तो बच्ची को दिक्कत होगी।
0: क्या दिक्कत होगी? दिक्कत तो तब होगी ना जब लड़की होगी। चल डॉक्टर के पास।
1: डॉक्टर के पास किस लिए?
0: नेहा, मैंने कल भी बताया था कि जांच के लिए जाना है।
1: लेकिन मम्मी जी, जांच के लिए तो मैं कल ही गई थी ना।
0: मैं उस जांच की बात नहीं कर रही हूँ, लिंग जांच करवाना है।
1: ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप?
0: मुझे कुछ नहीं सुनना है, सीधा सीधा डॉक्टर के पास चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं लिंग जांच नहीं करवाऊंगी। ये बच्चा आपके बेटे का अंश है, आप कैसे बोल सकती हैं ये सब?
0: अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या मुझे कहना चाहिए और क्या नहीं। सीधी तरह चलती हो या नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ।
0: सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगी।
0: देखो नेहा, मैंने पास के मोहल्ले वाले डॉक्टर से बात कर रखी है। लड़का हुआ तब तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो यही किस्सा खत्म कर दूंगी।
1: मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मात्र लिंग की वजह से आप उसे मुझसे अलग कर देंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: चलो नेहा।
1: नहीं मम्मी जी।
0: चलती हो कि नहीं?
1: नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं जाना।
0: तुम सीधी तरह चलती हो कि नहीं?
1: छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं भी।
0: चलो नेहा।
1: छोड़ो मुझे।
0: अरे सीधी तरह चलती हो कि नहीं, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी।
2: अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? नेहा गर्भवती है, उसको या बच्चे को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं माँ? किस तरह से आप उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं? इस हालत में इसके साथ खींचातानी करना कोई अच्छी बात है, कोई सही बात है? माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो?
0: तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं?
2: अरे माँ, करना क्या है, तुम परेशान किस लिए हो ये तो बताओ।
0: तो तुम क्या चाहते हो, इस बार भी इसको बेटी पैदा करने दूँ?
2: अरे माँ, फिर क्या हो गया, आप इतना क्यों भड़क रही हो?
0: भड़कू नहीं तो और क्या करूँ,

0: क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पहले भी दो लड़कियां पैदा कर चुकी है?
1: तो माँ, इसमें इसका क्या कसूर है, आप ही बताओ। ये कोई इसके हाथ में थोड़ी ना है।
0: तो किसका कसूर है, मेरा? सच कहती हूँ बेटा, अगर इसने इस बार भी बेटी पैदा की ना, तो सीधा के सीधा मायके भेज दूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए।
1: अरे माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किस लिए इतना भड़क रही हो? शांत होके बैठ तो जाओ माँ। लो बैठो कुर्सी में।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर लड़का नहीं होगा तो वंश आगे कैसे चलेगा?
1: देखो माँ, पहली बात तो ये कि बेटा होगा या बेटी, अभी से ये बहस क्यों कर रहे हो? क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो कि बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए? आखिर क्यों माँ?
0: तो बहस नहीं करूँ और क्या करूँ, तुम ही बताओ।
1: माँ सुनो ना, जो भी होगा उसको हम प्यार से अपनाएंगे ना, किस लिए इतना परेशान होना माँ? क्यों आखिर?
2: अरुण, मैं भी माँ को यही समझा रही हूँ।
0: नेहा तुम चुप करो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना।
1: अरे माँ, क्यों भड़क रही हो नेहा पर तुम? नेहा तुम चलो आराम करो, और तुम कोई भी टेंशन मत लेना। सुनो, माँ की बात का ना बुरा नहीं मानते, तुम इस अवस्था में अगर टेंशन लोगी तो बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। चलो आराम से तुम अपने रूम में सो जाओ।
2: लेकिन अरुण, माँ तो अभी भी नहीं मान रही है।
1: अरे नेहा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ माँ को, वो समझ जाएंगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ।
0: क्या है बोलो।
1: माँ सुनो तो सही।
0: क्या सुनो, अब सुनने को रह क्या गया है?
1: माँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो?
0: देखो बेटा, मैं तुम दोनों के भले के लिए ही बोल रही हूँ। बेटा होगा तो वंश तभी तो आगे बढ़ पाएगा।
1: माँ सुनो ना, तुम भी कितनी भोली हो। देखो माँ, बेटा हो या बेटी, ये दोष औरत को क्यों देते हैं हम? औरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है, पता है माँ तुम्हें? सबसे बड़ी भूल है हम सब की ये कि अगर बेटी हुई है तो ये औरत का दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं होता माँ।
0: तो फिर किसका दोष होता है, तुम ही बता दो।
1: माँ, बेटा या बेटी पैदा करने का समर्थ केवल और केवल पुरुष के पास होता है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ये कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कह सकते हो?
1: अरे मेरी भोली माँ, सही कह रहा हूँ।
0: तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी?
1: अरे माँ सुनो, पुरुष के पास एक्स के साथ वाई क्रोमोजोन होते हैं, औरत के पास केवल एक्स एक्स क्रोमोजोन होते हैं। पुरुष का एक्स और औरत का एक्स मिलकर बेटी को जन्म देते हैं, और पुरुष का वाई और औरत का एक्स मिलकर जो है ना माँ, वो बेटे के जन्म को मिलकर निर्धारण करते हैं। माँ तुम्हें पता है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जिससे बहुत से लोग जो है वो अनजान है। बहुत से लोग इस वैज्ञानिक सच्चाई को नहीं जानते हैं माँ, और मेरी भोली माँ तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी ये वैज्ञानिक सच्चाई नहीं जानती हो। इसलिए तुम इस तरह से नेहा के साथ बिहेव कर रही हो, इस तरह से उसको डरा रही हो, उसको धमका रही हो। माँ अब मैं आशा करता हूँ कि तुम ये सारी बातें समझ गई होंगी। माँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, क्या तुम समझ गई हो?
0: अरे बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम बोल रहे हो?
3: नमस्ते माता जी, और कैसी हैं आप?
0: नमस्ते नमस्ते, ठीक ही हूँ।
3: क्या हुआ माता जी, कुछ परेशान लग रही हैं आप?
0: ये बात जाके अपनी बहन से पूछो।
3: माता जी आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या घर पे?
0: होने को क्या है, तुम बहनों का वश चले तो तुम लोग मुझे जहर दे के मार डालो।
3: अरे माता जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए नेहा कहाँ है?
0: कमरे में होगी, खुद जाके देख लो।
1: अरे माँ तुम सुबह से गुस्सा होके बैठी हो, अभी तक देखो आपने मुंह फुला के रखा हुआ है, ऐसी भी क्या बात होगी है माँ? अब क्यों गुस्सा हो, अब तो अपना गुस्सा ठंडा करो, अब तो अपने गुस्से को कम से कम आप शांत करो।
0: शांत क्या, खाक होना है? पहले एक थी अब दूसरी भी आ गई, अब दोनों कर रही होंगी चुगलियाँ मेरी।
1: अरे माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
0: इसमें सोचना क्या, ऐसा ही है।
1: ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैंने ही बुलाया था, और वो उसकी देखभाल करेगी ना माँ, तुम इतना क्यों सोच रही हो?
0: हमने कोई कमी रखी है देखभाल में?
1: माँ मैं कब कह रहा हूँ कि हमने कमी रखी है, हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी मैंने ही बुलाया था आशा को।
0: बड़ा ही अच्छा किया तुमने उसको बुलाकर।

0: अरे नेहा, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है?
1: दीदी।
0: अरे नेहा, ये चल क्या रहा है? यहाँ तुम रो रही हो, बाहर तुम्हारी सास चिल्ला रही है, बात क्या है?
1: क्या बताऊं दीदी, पिछले 3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, लिंग जांच करा। आप ही बताओ, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? लड़का होगा या लड़की, है तो हमारा ही अंश ना।
0: अरे ये क्या चल रहा है इस घर में नेहा? अरे लड़का हो या लड़की, इस बात पे इस घर में इतनी परेशानी? और जीजा जी का क्या कहना है इस बारे में?
1: वो तो पूरी तरह से मेरा साथ दे रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है लड़का हो या लड़की। लेकिन मम्मी जी ने मेरा हाल बुरा कर दिया है, मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, बैठने नहीं देती। मैं परेशान हो गई हूँ रोज रोज की लड़ाई से।
0: अरे तो अरुण ने उन्हें समझाया नहीं क्या?
1: वो समझा चुके हैं पहले से, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है। आप तो जानते ही हो, ये बुजुर्ग लोग किसी की बात सुनते कहाँ हैं।
0: अच्छा नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। एक बार तो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। अरे लिंग जांच अपने आप में अपराध है, हम ये अपराध तो नहीं होने दे सकते ना?
1: हाँ दीदी बिल्कुल, मैं तो इस बच्चे के लिए तैयार भी नहीं थी, इनके कहने से मैंने ये देखा है। लेकिन अब लिंग जांच की बात, ये कहाँ तक सही है?
0: अरे नेहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सास से बात करते हैं, क्योंकि बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है।
2: लो आ गई अब दोनों।
0: अरे माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है?
2: क्यों, तुम्हारी बहन ने नहीं बताया?
0: उसने तो बता दिया है, पर अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं?
2: देखो आशा, मैंने इनको भी पहले बता के रखा है और तुम्हें भी बता रही थी कि मुझे इस बार लड़का ही चाहिए।
0: तो माँ जी, अगर आपको लड़का चाहिए, इसमें मेरी बहन क्या कर सकती है?
2: बस बस, अब तुम भी मुझे समझाना बंद करो।
0: देखिए माँ जी, ये मैं नेहा से सुन चुकी हूँ कि आप लिंग जांच करवाना चाहती हैं उसकी। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ, आप खुशी से कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद जेल जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार रहिए आप।
2: अरे अरे जेल?
0: जी हाँ जेल, और सिर्फ आप अकेली नहीं जाएंगी, आपके बेटा भी जाएंगे, और वहाँ पर बैठ के आप दोनों चक्की पीसने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा।
2: अरे अब ऐसा भी कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो अब जेल जाना पड़े?
0: अपराध तो आप कर रही हैं, लिंग जांच करवाना बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन अगर आप लिंग जांच करवाएंगी तो जेल जाना तो पक्का है।
2: अरुण देख बेटा, ये आशा कह कह रही है।
3: अरे माँ, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आशा की बात मान लेते हैं, नहीं तो हम दोनों को जेल में जाकर चक्की पीसने पड़ेगी।
0: जी हाँ माँ जी, सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आपने लिंग जांच करवाई तो अब रिपोर्ट मैं करूंगी।
3: अरे माँ सोच लो, जेल जाना है या लिंग जांच करवाना है?
2: अरे नहीं नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस माफ करो तुम।
0: ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो नेहा, अब तुम्हारे बेबी शावर की तैयारियां करें?
4: हाँ हाँ जरूर।

0: यहाँ तो सब ठीक हो गया, परंतु हर घर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती। ज्यादातर घरों में लड़की पैदा हुई है ये सुनकर ही सांप सूंघ जाता है। आज के बदलते युग में लड़कियां किसी भी मामलों में लड़कों से कम नहीं है, परंतु समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि बेटी होने के लिए औरत को प्रताड़ित भी किया जाता है, जबकि इसका सीधा सीधा संबंध पुरुष से होता है। आमतौर पर भारतीय परिवारों में बेटा होने पर जो जश्न मनाया जाता है या बेटी होने पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम तो कहते हैं भाई, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार के जरूरी अंग है। बस बच्चा स्वस्थ और हिस्ट पुष्ट होना चाहिए। दोनों के ही बिना परिवार अधूरा है। दोनों की किलकारियां एक सी हैं। प्यार दोनों के ही साथ एक सा है, फिर दिलों में सिर्फ बेटे की चाह क्यों, बेटी की चाहत क्यों नहीं, है ना? सोचने वाली बात।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिनमें एक बच्ची की फरियाद दर्शाई गई है। आइए सुनाती हूँ। मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बात जाने चल रही है कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। रात के अंधेरे में भी चल सकूंगी जब मैं बेखौफ, सम्मानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ। लड़की हो ये कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन नहीं स्वीकारना होगा मुझे कोई अभाव। सिर्फ कानून ही नहीं दिला सकता मुझे सम्मानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
0: अक्सर बात होती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जब एक बच्ची महिला अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाती है तो समाज की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि बदलाव सिर्फ एक साथ काम करना या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव होना असली विकास है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हम सबको कुछ न कुछ सीख मिली होगी और आने वाले समय में हम सब इस बदलाव का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Namaskar, main Amitabh Bachchan bol raha hoon. Maine TV ko bahut kareeb se dekha hai aur haraya bhi hai. Sahi suna aapne. बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो. पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया. इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा. बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए. यही है इसका पक्का इलाज. और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री. मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए. इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: ओ छोरा गंगा
1: सोरो शारदा
0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। अरे अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCU बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वरमालिका और स्वरमालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसी। इस श्रृंखला में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वरमालिकाओं का समावेश किया गया है। आइए संगीत की इस यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। प्रस्तुत है श्रृंखला राग रस बरसी।

और अवरोहों में सातों स्वर प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी सा है। ये अत्यंत ही लोकप्रिय राग है। इस राग में छोटा ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा आदि गाई बजाई जाती हैं। इस राग का गायन समय प्रातःकाल है। राग भैरवी के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। प्रस्तुत है राग भैरवी का आरोह।

अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं राग भैरवी की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग भैरवी की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, भोर भई चल गुरु दर्शन को। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई।

अभी आपने राग भैरवी की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्तुति का प्रयोग शिक्षण एवं अभ्यास हेतु करें। धन्यवाद।

राग रस बरसी, परियोजना परिकल्पना एवं मार्गदर्शन प्रोफेसर पी के भट्टाचार्य, परियोजना संचालन डॉक्टर हरमेश लाल, आलेख इंद्रदेव प्रसाद, विषय परामर्श संगीत एवं गायन हरभजन सिंह, उमा गर्ग, राकेश पंडित, संतोष कुमार एवं कुमार मुखर्जी, तबला वादन अमजद खान, तानपुरा वादन अरुण प्रभाकर, ध्वनियांकन भूषण गजभिये, सह निर्माण दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण रमेश रानी शर्मा तथा विषय समन्वय काव्य रचना निवेदन एवं कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे।
2: देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
3: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
2: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
3: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
4: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
3: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
2: कल नहीं, अभी।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: कभी तो हंसाए।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: Ole ole ole. Oh, Sholat. हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: मैंने

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा? देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
4: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 7790। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें होती हैं, हमारी बातें होती हैं, और हमारे आसपास क्या खास हो रहा होता है वो सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वर्तमान समय को अगर हम देखें तो स्टार्टअप की बातें चारों तरफ है। स्टार्टअप एक आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक ऐसा विचार जो आपको आगे लेकर जा सकता है। इस दिशा में, इस क्षेत्र में आप बहुत कुछ खास कर सकते हैं। जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। अगर आपको एक सच्चा अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। जहन में सवाल आता है कि स्टार्टअप क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से चर्चा की है। जी हाँ, स्टार्टअप चौराहा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर सौमिल मुखर्जी, एन एक्सपर्ट इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कार्यरत हैं। दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड एनएलपी कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ CISF ग्रेटर नोएडा यूनिट, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी। और इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है शारदा लॉन्च पैड इन एसोसिएशन विद PAPSWIRE, द पॉलिसी एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ स्टार्टअप इन यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी, और ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहा है सुनो शारदा 90.8 FM। आइए चलते हैं इस चर्चा की तरफ।
2: स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, इनोवेशन, या हिंदी में बोले तो नवाचार, उद्यमिता, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में हम लोग रोज ही सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं बहुत जगह पर, और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, बहुत लोग इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला शुरू की है स्टार्टअप चर्चा के नाम से, जो शारदा यूनिवर्सिटी में शारदा लॉन्चपैड फेडरेशन और पॉलिटिक्स ओवर पॉलिसीज कंपनी की तरफ से जॉइंट एक इनिशिएटिव है। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड के अंदर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे विशेष अतिथियों के साथ। हमारे साथ हैं श्री सौमिल मुखर्जी, जो PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस से हैं, और मैडम श्रद्धा अवस्थी हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले सौमिल मुखर्जी जी से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस में और

0: में काफी चीजों में एडवाइस की जरूरत थी फ्रॉम ऑल द साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स दैट आर अवेलेबल इन द कंट्री. सो एपीजे अब्दुल कलाम लेड दिस इनिशिएटिव एंड फ्रॉम देन करेंटली हम लीडरशिप है. अभी जो चौथा हमारे साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अजय सूद, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से आते हैं और वो खुद ही सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है. रॉयल फेलो ऑफ फिजिक्स के मेंबर है, प्लस उनके पास काफी पेटेंट्स है यूके और यूएस से. उन्होंने काफी रमन रेजोनेंस के ऊपर हार्ट पेसमेकर को इम्प्रूव करने की टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज को भी उन्होंने इंक्रीज किया करवाया है. तो अभी फिलहाल हम इनकी विजन्स के थ्रू अलाइंड है. और अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में दो तीन डिविजन्स हैं. प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है जो कि सर खुद लीड करते हैं. उसके अंदर नेशनल तौर के मिशंस आते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्वांटम हो सकता है, AI ML हमेशा हमारी कंट्रीज को बढ़ावा दे रही है और हर एक स्पेस में उसकी यूटिलाइजेशन है. AI ML में हमें देखने को मिलता है. और भी जैसे डीप ओशन मिशन हो गया, फिर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन हो गया, और फिर वन हेल्थ मिशन है, अग्नि है जो कि स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स को हेल्प करता है. ऐसे मिशंस पे PSA ऑफिस काम करता है और लीड करता है. फिर एम्पावर टेक्नोलॉजी ग्रुप भी है जो बेसिकली पॉलिसीज पे इंडस्ट्री की जो गैप्स है, जो लैक्यूनस है, उसको एड्रेस करने में लगे होते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को कैसे प्रॉपर तरीके से किया जाए लाइन मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करने के लिए. और तीसरा हमारा डिवीजन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और लीड करती है डॉक्टर सपना कोटी जो IIT मद्रास के स्कॉलर है. एंड दिस डिवीजन बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डिवीजन है, इनका इसका मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री अकेडमिया एंगेजमेंट्स कराते हैं, फैसिलिटेशन कराते हैं फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द कंट्री एंड इन एंड सीमलेस कोलैबोरेशंस थ्रू प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड मंथन, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद.
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है तो ये सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है जितनी मेरी जानकारी में है. और जरूर ही जो हमारी भारत सरकार के जो मिशन है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम अभी ड्रीम लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जरूर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस का रहता होगा इसके अंदर. मैडम श्रद्धा वस्ती, आपके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए. हमारे साथ सुनो शारदा FM से बहुत से हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं और हमारे YouTube चैनल से भी बहुत से हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और इसको इसके बारे में और जानना चाहते हैं. तो थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप, जैसे मैं जानता हूँ इंडस्ट्री और अकेडमिया दोनों ही डायरेक्शन में आपने बहुत काम किया है, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए जानकारी दीजिए.
2: नमस्कार सभी लोगों को. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 17 साल का एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री और एकेडमिया में ज्यादा रहा है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा कनेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिली और बात करी, उनके जो आइडियाज थे वो कैसे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं. तो जो मैंने सोचा कि इसी फील्ड में ये लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे जा सकते हैं, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बेटर क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं, तो इसी में मैंने काफी काम किया है. प्लस मैं एक ट्रेनर भी हूँ और सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ. लांगवा फिना ग्लोबल सर्विसेज कंपनी है, उसी में तो उसी में ही मैं एक हमारा एक प्रोग्राम चलता है जो कैंपस टू कॉर्पोरेट कनेक्ट. तो उसमें एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं. तो उसमें जो एक पार्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं, नया डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए कि उनको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बाहर से तो हमें जितना मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा अंदर का मोटिवेशन कैसे डेवलप होगा. तो आइडियाज बहुत होते हैं बच्चों के पास, बट कैसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, कैसे आइडियाज को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए कुछ हम जो है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. तो उस सपोर्ट और गाइडेंस में बहुत सारे चीजें हैं, मेंटरिंग है, कोचिंग है. तो डिफरेंट एरियाज हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत जरूरत होती है, तो उसी फील्ड में हम उनको सपोर्ट देते हैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ कोच.
1: धन्यवाद. हम लोग स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आजकल ये बहुत पॉपुलर टर्म हो गई है, लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें तो सदियों से जो भारत देश रहा है वो किसानों का और उद्यमियों का देश रहा है. कितना भी पुरानी हम सभ्यता में चले जाएं, जो हमारे भारत के इतिहास के अंदर है, तो हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर लोग या तो

किसान थे या खेती से जुड़े हुए थे या उन लोग किसी ना किसी तरह के रोजगार के अंदर थे, तो ये कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता हमारे एक इतिहास का, हमारी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो डेफिनेटली उसी का इफेक्ट हम आजकल देख रहे हैं कि जब ये सपोर्ट हमें सरकार की तरफ से मिलना शुरू हुआ तो हमारी वो जो सभ्यता चली आ रही थी कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो इनबिल्ट स्किल्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं एक उद्यमी जगत में जाने की, उद्यमी बनने की या किसी भी तरह के रोजगार को आगे बढ़ावा देने की, नए नए रोजगार शुरू करने की, तो वो फिर से कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रही है हमारे अंदर और उन स्किल्स को हम डेवलप कर पा रहे हैं। और जहां पर और जरूरतें हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, तो आप लोग जैसे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इससे इनिशिएटिव्स के साथ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कमी लग रही है, कुछ सपोर्ट में दिक्कत उन्हें आ रही है, तो वो सारी दिक्कतें और वो सारी कमियां बहुत जल्दी पूरी होंगी। और ये जो मिशन हम लेके चल रहे हैं स्टार्टअप इंडिया का और एक आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का, तो ये मिशन बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं जरूर पूरा होगा। तो हम इसके बारे में अभी और स्टार्टअप्स में उनको सपोर्ट करने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आने के लिए किस तरह से पीएसए ऑफिस काम कर रहा है और क्या नए इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, इसके बारे में अभी हम और एक जानकारी लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के अंदर। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम के बारे में, और हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं सौमिल मुखर्जी जी और मैडम अवस्थी जी। तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी चर्चा में, और सौमिल जी मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस के अंदर बहुत से ऐसे विषय हैं जो स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, या जो इनोवेशंस नए नए लोग लेकर आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें सिस्टम्स नए बनाए जा रहे हैं, नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि स्टार्टअप्स और इनोवेशन और रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो युवा लोग हैं या हमारे जो और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ अपना जॉब में या कहीं पर काम करने के बाद कुछ उनके पास नए थॉट्स, नए आइडियाज आते हैं और उसके ऊपर फिर वो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं?
1: जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है जो हमारे इंडिया में बन रही है, इंडिया की रैंक जब शुरू हुई थी, ये स्टार्टअप इंडिया की जो मिशन है सरकार की वो 2016 में स्टार्ट हुई थी केवल 50 स्टार्टअप्स के साथ, और आज की डेट में हमारे पास DPIT रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है, दैट इज अराउंड 92,000 प्लस करेंटली अभी फिलहाल। तो हम अगर बात करें, ये सारे 90,000 के जो स्टार्टअप्स है ये अपने अपने डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, कोई AI ML में, कोई अपने क्वांटम में, मशीन लर्निंग में, ब्लॉकचेन में, इतने सारे नए तरीके के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। बट एक रूफ में अगर हम बात करें कि अगर हर स्टार्टअप कोई अपना अलग करना चाह रहे हैं, कोई अपना ऐसा बहुत हमने केसेस देखे हैं जहां पे स्टार्टअप्स अपने डायरेक्शंस को चेंज लेते हैं, उसको हम कहते हैं अडैप्टेबिलिटी इन द टर्मिनोलॉजी, कि वो अडैप्ट कैसे करते हैं अपना इन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीड ऑफ द मार्केट, कि अगर आज वो टेक्सटाइल में है तो कल लेदर में है, क्योंकि उसको टेक्सटाइल से इतने तरीके से एक तरीके से उसको या तो दे आर नॉट helping it to earn more revenue, or it is they are facing challenging to raise funds, and they hence they are moving into new directions also, it is completely acceptable, it is good, and it because they are exploring new things, और वो उनको नए दिश उनको चाहते हैं कि नए चीजें explore करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि AI ML और ऐसा चीज है जो हर एक जगह पे जा सकती है। आप एक्सपोर्ट्स मैच की बात करो, या आप हॉस्पिटल की बात करो, या आप एक पूरा डायरेक्टरी की बात करो, जैसे हमारे आधार कार्ड हुए हैं या जो भी हमने आइडेंटिटीज गवर्नमेंट ने आज तक बनाई है, ये कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है अगर AI ML हमारे पास नहीं रहता या टेक्नोलॉजीज नहीं रहते। बायोमेट्रिक्स की बात करो, अब जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, इवन तक कि आप रेलवे स्टेशन में आउट रेलवे को मॉनिटर करने के लिए भी आप रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग लगा सकते हो थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजीज, राइट? तो ऐसे इससे कि हमारे एक्सीडेंट्स जो हमने अभी फिलहाल देखे हैं, 2-3 एक्सीडेंट्स बहुत भयानक तरीके के एक्सीडेंट्स हुए, इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो स्टार्टअप्स के पास टेक्नोलॉजी है उनको इंडस्ट्री का वैलिडेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री की टेस्टिंग की जरूरत है। वहां हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे पास है, जुड़े हुए हैं PSA ऑफिस के थ्रू, करीबन 2000 के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट से हैं। IISER की बात करो, NITs की बात करो आप, या NIT CSIR की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो आप, ICER, तो वहां पे सारे ये लोग हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपना कोई ना कोई जर्नल्स लिखे हैं, अपने अपने एक्वलेट्स हैं, और हमने रेटिंग मैकेनिज्म्स भी डाल दिए हैं प्लेटफॉर्म में ताकि इंडस्ट्री को आसानी हो और स्टार्टअप्स को भी इजी हो कि वो सिलेक्ट कर पाए कि किस तरीके के मेंटर्स चाहिए उनको, और इसके लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये गवर्नमेंट की ऑफरिंग है, ये निःशुल्क है अगर सीधी बात पे कहें। और इसके अलावा हम इंटरनेशनल एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, जैसे USAID है, फेलोशिप प्रोग्राम्स करते हैं, वुमेन इन स्टेम में हम लोग EY STEM के थ्रू हमने खगोल चला डिस्कवरी प्रोग्राम किए हैं एस्टेरॉयड्स, जिनमें 14 लड़कियां को हमने चुने हैं, उसमें से 3 लड़कियां को नासा में ट्रेनिंग कराने के लिए हमने भिजवा दिया है, तो वहां पे उनको सपोर्ट मिल रही है। प्लस अगर हम बात करें किसान के लिए, तो हमने किसान मित्रा हमने डेवलप किया है इसरो के थ्रू, और नबार्ड और हिंदुस्तान यूनिलीवर उसमें मिलकर काम कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर कृषि ऐप उन्होंने डेवलप किया जिसमें कि वाटर टेबल, सॉइल, मॉइस्चर कॉन्टेंट, इन चीजों को कन्वर्ट करके किसानों की भाषा में, लैंग्वेज में उनको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस फॉर रेवेन्यू अर्निंग्स एंड मार्जिन increasing their revenue and also can leverage the FPO, जो FPO उनको मिलता है। तो इस तरीके के कुछ initiatives हमने लिए हैं, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप मंथन प्लेटफॉर्म पर आओगे फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, तो वो डेफिनेटली आपको पता चलेगा।
2: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मंथन, आप कुछ बता सकते हैं?
1: हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसे सरकार ने बहुत सारे पहले के प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो केवल R&D के ऊपर है। इंडिया CSR के भी पोर्टल्स हैं जो CSR है, लेकिन हर पोर्टल की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर पोर्टल की अपनी अपनी कॉस्टिंग्स होती हैं, वो होती है। तो इस पोर्टल की खासियत ये है कि दिस हैज बीन डन ओनली थ्रू क्राउड फंडिंग, इंडस्ट्री सपोर्ट, नॉट गवर्नमेंट सपोर्ट। हमने गवर्नमेंट से कोई मतलब गवर्नमेंट हैज नॉट सपोर्टेड, इट इज इंडस्ट्री ड्रिवन, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है। इंडस्ट्री को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो, और स्टार्टअप्स को हेल्प करना है, तो इंडस्ट्री को उनको बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसके वजह से हमारी जो फंडिंग है ये पूरी एक्ट ग्रांट्स, AWS और मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी जो कॉग्निजेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने अपनी वॉलंटरी फंडिंग दी है इस प्लेटफॉर्म को, और 15 अगस्त को पिछले साल हमने
2: इससे ये जो हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं
1: इसके सारे एंटरप्रेन्योर्स, और हम ऑलरेडी ऑनबोर्ड करते हैं इसमें। हमने कुछ टेम्पलेट्स डाले हैं जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स को इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि हम स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम दे रहे हैं, आपको फेलोशिप प्रोग्राम्स दे रहे हैं, और फेलोशिप्स और मेंटरशिप इसलिए क्योंकि हर एक जगह में रिसर्च फेलोशिप्स की जो बढ़ावा है इसको देने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ग्रास रूट इनोवेटर्स को ये नहीं पता होता कि वो उनकी यू नो या तो उनकी क्वालिफिकेशंस कम होते हैं या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, तो दैट सिक्योरिटी नीड्स टू बी देयर, राइट? अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हर एक चीज में सिक्योरिटी चाहिए इंसान को। सो इफ यू टॉक अबाउट वाटर सिक्योरिटी, आज की डेट पे दिल्ली में जो हम पानी पीते हैं वो भी सेफ नहीं है, राइट? आज की डेट पे अगर हम फूड की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं FSSAI इसको कहीं ना कहीं पुश दे रहा है, फॉर एवरी अदर डे वी गेट टू सी न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो भी लाइसेंस्ड है। तो हर एक जगह पे अपने अपने सिक्योरिटीज की जरूरत है, और इसको मॉनिटर करने की जरूरत है, इसलिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जहां पे इंडस्ट्री आए और इक्वली सपोर्ट करे थ्रू इक्विटी फंडिंग और अदर मींस दैट दे कैन डू विद द स्टार्टअप्स।
0: तो बहुत अच्छा आपने बताया, हम मंथन पोर्टल के बारे में जरूर और जानकारी लेंगे। दो तीन चीजें जो आपने बहुत अच्छी बोली मुझे अच्छा लगा, एक जो मेंटरिंग का बताया, तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर सही गुरु और सही मार्गदर्शक किसी को मिल जाए तो वो उसको कहां तक लेके जा सकता है, कैसे उसे पार लगा सकता है, तो बहुत जरूरी ये चीज है। और यही मार्गदर्शन और मेंटर की फॉर्म में जो आज के टाइम में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत पॉपुलर है कि बहुत सारे मेंटर्स हैं, लेकिन कौन ऐसा मेंटर है जो सही मायने में आपके लिए एक मार्गदर्शक बन जाए और जो भी समस्याएं हमारे स्टार्टअप फेस कर रहे हैं इससे उन्हें पार लगा पाए और जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो उनके स्टार्टअप का एम है, जो उनका विजन मिशन है, वहां तक उनको सही तरीके से कैसे पहुंचना है, ये मार्गदर्शन अगर हम इस मंथन प्लेटफॉर्म के थ्रू और PSA के अलावा बाकी इनिशिएटिव्स के थ्रू अगर स्टार्टअप्स को मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात और स्टार्टअप्स के लिए नहीं हो सकती। और उसके लिए भी उन्हें कोई खर्चा नहीं करना है तो ये दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टअप्स हम सभी जानते हैं
1: ऐसे ही 500 स्टार्टअप्स को ऑलरेडी उनको वो कर चुके हैं, हम उनको फंडिंग दे चुके हैं,
0: तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी स्टार्टअप्स हम जानते हैं उनके पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो फंड्स की लिमिटेशन होती है। अगर बहुत ज्यादा खर्चा उनको इसमें नहीं करना पड़ रहा है, उन्हें वो सपोर्ट मिल रहा है, तो
1: और जहां हमारे पास जैसे एलन मस्क जैसे लोग हैं जिनके पास फंडिंग की कैपेबिलिटीज हैं और इतने यू नो इंटरनेशनल में इतने कुछ करते हैं वो, तो उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां पे उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया, वो कोहोर्ट्स बना रहे हैं। दो प्रोग्राम्स ऐसे मैं बता सकता हूं जो एलन मस्क की जो एक्सप्राइज फाउंडेशन है उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच किया है और उनको बेनिफिट मिला है, स्टार्टअप्स उन्होंने सिलेक्ट किया है। एक जो पहला चैलेंज था वो है डीकार्बनाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, तो उन्होंने ये चैलेंज हमारे प्लेटफॉर्म पर थ्रो की थी और बहुत सारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली अभी वो वाइल्ड फायर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अपने वाइल्ड फायर की इश्यूज देखी होगी, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, ब्राजीलियन अफ्रीकन कंट्रीज में, इंडिया में भी बहुत सारे एरियाज हमारे फॉरेस्ट में कवर्ड होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अगर कुछ करना है, वाइल्ड फायर के लिए एक्शन लेना है, तो उन्होंने उसमें भी फंडिंग डाला है। तो ये करीबन कुछ नहीं तो अपने आप में 1500 करोड़ की बजट्स हैं जो बजट्स के थ्रू स्टार्टअप्स को,
0: तो ये सारी जो फंडिंग है ये मंथन पोर्टल के थ्रू सब स्टार्टअप्स को,
1: ये सारे स्टार्टअप्स इंडियन स्टार्टअप्स को जा सकता है मंथन पोर्टल के थ्रू, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया की जो पोर्टल है वो भी इंटीग्रेटेड है अभी मंथन पोर्टल में, और किस केवल ये नहीं कितने जितने भी मंत्रियां हैं मतलब मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, वो सारे मंत्रालय के जैसे जल शक्ति है या फिर आपके पंचायती राज बताओ आप, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करो, या कोल मिनिस्ट्री बोलो, सारे मिनिस्ट्रीज के जितने भी स्टैंड जी के ग्रुप पे तौर पे उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया, अराउंड 215 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से करीबन 50-60 प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पर है जो केवल स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। इनफैक्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी है उसमें, भी आपको 5G 6G इन पे भी है, बहुत सारी चीजें।
0: तो ये तो और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि जैसे आपने पहले बताया था कि स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जब भी कोई होता है तो वो कहाँ किस दिशा में जाएगा उसके लिए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने भी बहुत स्टार्टअप के साथ काम करते हुए देखा है कि आपने पहले क्या किया है वो इतना जरूरी नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस में डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन कोई भी स्टार्टअप किसी भी एक बिजनेस से डिफरेंट कैसे होगा, तो जब तक वो किसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा जो बहुत लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करती है, बहुत जगह पर है, और अगर उसको वो सॉल्व कर दे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आ सकता है या उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर आना ही, ये खासकर जब हम युवाओं से बात करते हैं, स्टूडेंट्स हमारी शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम होती है कि मैं किस फील्ड में काम करूं। उनके पास पैशन है, वो काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाऊं जिसको सॉल्व करने से मेरा एक स्टार्टअप, एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप खड़ा हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंथन पोर्टल से आ रही है तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को उस मंथन पोर्टल पर जरूर जाना चाहिए और आप जाकर वहां देखें, वहां से आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी, बहुत से ऐसे नए आइडियाज मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वहां पे हैं जो आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रद्धा मैडम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा, हमारे स्टार्टअप्स जब, खासकर जो यंग युवा हमारे हैं, ये जब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इन्हें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक टीम बिल्डिंग की, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो कोई एक एक आदमी अकेला नहीं चला सकता, आपको एक टीम बनानी पड़ती है और उस टीम में भी आपको मल्टीपल क्वालिटीज चाहिए। तो ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटीज हैं जो आप लोगों ने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम किया होगा या ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम किया होगा जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया और फिर आगे वो बढ़ते चले गए, थोड़ा सा इन स्पेशल क्वालिटीज के बारे में हमें बताइए जो किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करने में मदद कर सकती है।
2: तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले आपका जो है आपका खुद का सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस, आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए, आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, आपका जो आइडिया है वो कितना, उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो उस वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आपका एक जो टीम बिल्डिंग है वो अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का जो, आपके साथ जो लोग काम करना चाहते हैं वो आपके ही लाइक माइंड के होने चाहिए, मींस लाइक माइंडेड पीपल्स जो अगर होंगे, यू आर सराउंड विद लाइक माइंडेड पीपल्स, तो उससे क्या है कि आपका आइडिया और उभर के सामने आए,
0: एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं।
2: तो इसमें एक चीज तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है टीम बिल्डिंग। टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो अगर हम देखें, हम जब साथ में काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो हर कोई अपने अपने पॉइंट्स लेके आएगा और उससे जो रिजल्ट आएगा वो और भी अच्छा होगा बजाय हम अकेले कुछ करें। तो एक तो हो गया टीम बिल्डिंग, दूसरा हो गया सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में जब हम बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई आइडिया को लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी जो चॉइसेस हैं, आपने क्या चूज किया है, आपकी टीम कैसी है, आपके टीम के लोग कैसे हैं, उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर कैसा है जो कि आपके स्टार्टअप में हेल्प करें, तो वो जरूरी है, क्योंकि आपके चॉइसेस ही आपके डिसीजंस को हेल्प करेंगी बनने में। और कभी भी कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है, क्योंकि आपने जब कोई डिसीजन लिया होगा तो वो डिसीजन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सही होगा। कभी कभी टाइम सही नहीं होता है बट डिसीजन सही होता है। तो कभी भी डिसीजन से बैकआउट नहीं करना है कि हमने डिसीजन लिया, नहीं नहीं वो गलत हो गया, तो ये नहीं सोचना है। तो इसके लिए आपको एक इनर मोटिवेशन हमेशा रखना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन

0: इवन आपको आपके टीचर्स फैकल्टीज और आपके बड़े सभी लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशन देते रहते हैं, बट जब तक आपका इनर मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप अपने बारे में नहीं जान रहे हैं, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा.
1: बेसिकली जो स्टार्टअप्स में एक बार एक बात इस, क्योंकि आप ये इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे एक बात कहना होगा इसमें कि अगर हम स्टार्टअप्स बिल्डिंग की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टअप्स शुरू होती है वो शुरू होती है आइडिएशन से. आइडिएशन जो है, जो कह रहे हैं मैम कि आइडिया है, एक आइडिया, आपको ये नहीं सोचना है कि ये आइडिया अच्छा है या बुरा है या किस तरीके. अगर आप खुद ही उस आइडिया को, मतलब आप अगर खुद आइडिया को यूज करते हो, मैं अगर कुछ भी एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिक टू बेसिक चीज, अगर आप मतलब पैडमैन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन में उन्होंने खुद ही अपने आप को उस शूज में डाल के उन्होंने चेक किया, टेस्ट किया, और उस इम्पैक्ट की सोशल इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है, क्या कहां जा, क्योंकि उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगी कि क्या ये कमर्शलाइज हो पाएगा. वो तो इंडस्ट्री की बात है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं. लेकिन ये आइडिया पुट करने के लिए अगर आपको कोई, हो सकता है 10 में से 9 आदमी सुने ही ना, इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया खराब है. आपका आइडिया को जो है आपको करेक्ट लोगों से करेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो ये कह रहे हैं कि अगर आप सही लोगों को नहीं चुनोगे तो आपका जो है टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा. एंड टुडेज इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली इन अ वुका वर्ल्ड, टाइम इज मनी. तो इसका जो है, आपका नेबर्स हो सकता है, आपका कजिन्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी, रिलेटिव, डोंट हेजिटेट टू आस्क और अप्रोच एनीवन. इफ यू आर रियली प्लानिंग टू बिल्ड अ स्टार्टअप, यू शुड टॉक टू मल्टीपल पीपल. इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप शेयर भी कर सकते हो. सब मतलब सुनना सबका है, करना अपना है.
2: ये बहुत अच्छा आपने बताया.
0: ये तीन पॉइंट्स और थे जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. एक तो जैसे कि सर ने बताया कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. अपने हर डिसीजन के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपके अंदर एक कुछ करने की इच्छा होगी कि हाँ, क्योंकि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा करके दिखाना है, मेरी टीम को अच्छा बनना है. तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी एंथुजियास्टिक और इम्प्रूव योर नेटवर्किंग स्किल्स. आजकल लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं और बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये एनफ नहीं है.
1: लिंक्डइन,
0: हाँ, ये एनफ नहीं है. लिंक्डइन के थ्रू भी आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए. कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, वहां पे आपको कई सारे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, जो जिनसे आप कनेक्ट होंगे, जिनसे आप बात करेंगे, जिनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है. दूसरी चीज, जब आप सपोर्ट ले रहे जा रहे हैं तो ये टू वे, एक तरह से टू वे स्ट्रीट है. तो उसमें आप सपोर्ट दे भी रहे हैं और आप सपोर्ट ले भी, मतलब आपको सपोर्ट मिल भी रहा है आप, और आप भी सपोर्ट किसी को दे. तो यू हैव टू एक्सचेंज द आइडियाज. तो नेटवर्किंग स्किल्स इम्प्रूव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का. और अगर लास्ट पॉइंट देखें तो लास्ट पॉइंट आपका है, यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी फेलियर. क्योंकि बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो स्टेप, किसी ना किसी स्टेप पे आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो रहे हैं, तो उसी फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह मान के आगे बढ़े. अब जैसे कि थॉमस एडिसन का एक कोट था, उसने कहा था कि आई हैव नॉट फेल्ड. जो उसने लाइट बल्ब बनाया था उससे पहले तो उसने ये बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज नॉट टू ट्राई. 10,000 वेज जो है उनको ट्राई नहीं करना है, उसने वो फाइंड करा, बजाय इसके कि वो इसको फेलियर माने. तो लाइट बल्ब
1: इन्वेंट हुआ,
0: हाँ, करेक्ट फॉर्मूला. तो हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ अगर हम देखेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं.
2: बहुत अच्छा आपने कहा. हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपने सुनो शादा FM के श्रोताओं के साथ दोबारा जल्दी जुड़ेंगे.

0: मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सुनो शारदा से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोतागण। और हम स्टार्टअप चर्चा सीरीज में आज उपस्थित हैं हमारे अतिथियों के साथ, सोमिल मुखर्जी जी और मैडम श्रद्धा अवस्थी जी के साथ। तो मैडम, मैं अभी ब्रेक से पहले हम लोगों ने जो बात की, आपने बहुत अच्छे कुछ चीजें बताई कि फेलियर एक ऐसा पार्ट है जो हर एक स्टार्टअप जर्नी के अंदर एक रहता ही है और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फेलियर से हमें रुकना नहीं है, हमें उससे सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। क्या नहीं करना है वो जानना है और आगे क्या अलग करना है वो हमें उससे जानना है। और एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई थी, जैसे ऐसा माना जाता है और मैं भी ये मानता हूं कि जानकारी की और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, हमेशा आपको जानते रहना है, नया नया सीखते रहना है। तो एक वर्ड आपने आज मुझे नया बताया कि टीम की फुल फॉर्म भी कुछ होती है। मैं चाहूंगा हमारे सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं के लिए आप एक बार फिर से बताएं जो टीम के बारे में आपने बताया था कि टीम एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इस वर्ड का।
1: टीम का मतलब जैसे हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कोई ग्रुप बनाते हैं कुछ टास्क को या प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए हम जो है सोचते हैं, अकेले तो एक आइडिया जनरेट हो नहीं सकता, मतलब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें एक टीम बनानी होती है। तो बेस्ट जो लोग हो, मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, तो उनको हमें कनेक्ट करना होता है। तो उस कनेक्शन से क्या होता है कि हमारा जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी और बेहतर होता है। तो टीम का मतलब ही यही है, जैसे आपने फुल फॉर्म पूछा तो टुगेदर ईच अचीव्स मोर। तो हर किसी की क्योंकि क्वालिटी है तो हर कोई एक साथ मिलके उस अपनी ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है।
0: तो मतलब मैं इसे अब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक और एक मिलके 11 बनाना है, एक और एक दो नहीं करना है, हमें एक और एक 11 बनाना है। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। स्वामी जी, मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहूंगा। मंथन पोर्टल पर, जैसे मैं खुद भी उसका यूजर हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए उस पे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स आती रहती हैं, तो किस तरह से आपने इतने सारे इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं, इन सबको आपने जोड़ा है और कैसे इसमें स्टार्टअप्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं और क्या नया इसमें कुछ आने वाला है, आप हमें कुछ जानकारी दें।
2: जी, तो देखिए, मंथन पोर्टल जो है ये बेसिकली जो है नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज डिसेमिनेशन और आइडियाज की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, जो स्टार्टअप्स या ग्रास रूट इनोवेटर्स से आती है। तो इसके लिए हम डिमांड साइड की बात करें, अगर हम डिमांड, हम दो तरीके के काम करते हैं। एक तो डिमांड साइड जो कि डिमांड ड्रिवन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया एग्जांपल्स पहले आपको, स्टेट गवर्नमेंट या ग्लोबल फाउंडेशंस या फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज, सोशल एंटरप्राइजेस, कई तरीके के ऐसे हैं जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं मंथन प्लेटफॉर्म पर, कि उनकी सीएसआर की रिक्वायरमेंट है, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना चाहते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करना है या उनको मार्केट रेडी की चीजें चाहिए। और हमारे एक तरीके, दूसरे तरीके स्टार्टअप्स और इको एमएसएमईज और एनजीओज, फिर अपने जो भी है इंक्यूबेटर्स, फिर अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स की बात करें, जो जोधपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और भुवनेश्वर जैसे शहरों में ऑलरेडी है, एस्टेब्लिश्ड है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी जो है वो रिव्यू करती है उसको। ये सारे सप्लाई साइड के पिलर्स हैं हमारे। तो हम क्या करते हैं, हम इनके प्रपोजल्स जो है, जो इनोवेशंस हैं स्टार्टअप्स, 80,000 स्टार्टअप्स और जितने भी हैं टोटल, इनके हम सारे प्रपोजल्स को शोकेस करवाते हैं। दिस इज एन फ्री अपॉर्चुनिटी कि इनकी प्रपोजल्स जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे शोकेस हो सकता है। तो आपको केवल उसमें टाइप करना है कि आपको एथेनॉल के व्हीकल्स की सिमुलेशन चाहिए या आपको उसकी नॉलेज बनाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स बनाने, तो उसका आपको सर्च करना है उस प्लेटफॉर्म पे और उसके अंदर आपको 10 प्रपोजल्स दिखेंगे।
0: मतलब इस पे ना सिर्फ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल रही है बल्कि जिन लोगों ने उसमें काम कर लिया है तो वो भी हमें इसका सॉल्यूशन भी वहीं पर मिल जाएगा,
2: सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसके साथ साथ वो सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी एमओयू साइन हो गया और वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो निमैंस करके एक जो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जो टेली मेंटल हेल्थ की प्रोजेक्ट है, उनको हमने अभी फिलहाल ही दो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं फैसिलिटेट। एक लोएज है जो एमएनसी है पीएफएसआई सेक्टर में, वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिमेंशिया डिजाइन स्टूडियो जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं प्लस सिजोफ्रेनिया करके जो डिजीज होती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है एंड ये अनडिटेक्टेबल होती है बीमारियां, ये डिटेक्ट नहीं होती है इजिली बिकॉज इनके डायग्नोसिस करने वाले जो डॉक्टर्स उनको पास भी ये टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो किस तरीके से हम इसको रिहैबिलिटेशन और इसको इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके फैसिलिटेट करके एक स्टूडियो बना सकते हो, एक फैसिलिटी बना के उनको सपोर्ट करने के लिए हमने फंडिंग दिया है। निवेंस उस पर काम कर रही है और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करवाते हैं थ्रू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये इस तरीके के सारे आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इंडस्ट्री खुद आके बताती है। इस तरीके के PSUs हो गए, तो PSUs में जैसे आप अगर BPCL की बात करें या HPCL की बात करें, गेल की बात करें, सेल की बात करें, ये सारे नवरत्नाज हैं और इनके पास जितना भी इनकी CSR और R&D एक्सपेंडिचर होती है तो ये अपना जो डाइवल्ज जो स्पेंडिंग जो पैटर्न है हम देखते हैं कि CSR स्पेंडिंग में भी पैटर्न की अनयूटिलाइजेशन होती है क्योंकि वो स्पेंड ठीक तरीके से कर नहीं पाते, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको या तो उनका मतलब इशू हो जाता है या तो उनका डायरेक्शन आता है कि PM केयर्स फंडिंग में ट्रस्ट करना है, उनको हॉस्पिटल बिल्ड करने है। अगर हम उनको ये बताएं कि अगर आप उसी कॉस्ट की या हाफ ऑफ दैट कॉस्ट पे आप केवल 50 स्कूल में टॉयलेट्स बनाने के जगह आप उसको बायो टॉयलेट्स बनाइए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, साथ साथ सस्टेनेबल भी कर पाएंगे और वो भी कम कॉस्ट पे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस को हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं जो भी क्रेडिबल है और उसका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन का सिनेरियो।
0: जरूर, मुझे लगता है हमारे देश में इतने सारे यंग इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और ये सभी इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग बहुत सारा अपना एक समय और पैसा फंड्स के ऊपर लगाते हैं, रिसर्च के ऊपर लगाते हैं।
2: जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे जितने भी नवरत्नास हैं हमारे इंडिया में, इंडियन ऑयल, गेल, सारे PSUs को मैंडेट कर दिया है नीति आयोग ने, गवर्नमेंट ने, कि हर एक PSU के पास अपना R&D और इनोवेशन का सेल होना चाहिए। शायद आपको पता हो इंडियन ऑयल के पास ऐसे फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं फरीदाबाद में जहाँ पे उन्होंने 5 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस भी बनाए हैं सेमी कंडक्टर पे, करोशन पे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी और भी बहुत सारे जो डायरेक्टली हो सकता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें और इसमें भी स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी अहमियत रोल है कि वो अपना जितना ये जितने भी सेंटर्स क्रिएट होंगे इन सबको वो इंक्यूबेट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल गाइडेंस मिल सकती है। ये PSUs हमारे पास आके ये बताते हैं कि ये जैसे अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन लोगों ने हमें इन सारे जितने भी एफिलिएटेड कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट रिकमेंडेशन लेटर्स भेजे हैं मंथन प्लेटफॉर्म को यूटिलाइजेशन करने के लिए, इनके R&D और इनोवेशन को सॉल्व करने के जो भी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, तो ये PSUs के पास जितने भी फंडिंग्स अनस्पेंट बजट्स हैं वो इस तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी CSR MCA रूल्स के दौरान हमें ये भी पता है कि जो भी CSR की फंडिंग है वो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और जो ICR और जो भी लैब्स हैं इन सब इंक्यूबेटर्स को सबको जा सकता है और इसमें R&D इनोवेशन को भी कर सकते हैं क्लॉज 9A के अकॉर्डिंगली।
0: तो ये जितने भी PSUs हैं इन सबके जो इनोवेशन सेंटर है तो मंथन पोर्टल के थ्रू इन तक पहुंचा जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमें इतनी सारी जानकारी एक ही पोर्टल पे मिल जाती है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता है। श्रद्धा जी, मैं थोड़ा सा आपसे को फाउंडर्स और हमारे स्टार्टअप टीम बिल्डिंग के बारे में और जानना चाहूंगा। आप हमारे सुनो शारदा FM के श्रोताओं को अगर बताएं कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम जो स्टार्टअप फेस करते हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी वो टीम के साथ वो काम करते हैं और बहुत सारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है और कैसे वो आपस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और इसके लिए स्टार्टअप्स को और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपका जो डिसीजन है, मेन तो डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होगा तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आप बेस्ट ही सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये ना कि हाउ टू फाइंड अ राइट को फाउंडर, अगर हम देखें तो आपका जो कहने का मतलब है वो शायद यही है। तो एक अगर आपको को फाउंडर चाहिए, बिकॉज अकेले तो कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता, मतलब यू हैव टू मेक अ टीम फॉर दिस। तो इस टीम को बनाने के लिए आपके को फाउंडर चाहिए। आपको को फाउंडर के लिए अगर आपको मतलब आपके रिक्वायरमेंट है और अच्छा को फाउंडर चाहिए, परफेक्ट को फाउंडर चाहिए, तो उस रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो जब आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है फिर तब आप जाके आपको क्या चाहिए वो आप जान पाए, मीन्स आपको अपने को फाउंडर में क्या चाहिए वो वही चाहिए होगा जो कि आपके में नहीं है, अब यही सोचेंगे, तो आपके अंदर जो क्वालिटी नहीं है आप अपने को फाउंडर में चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी उसको आती हो या वो इनोवेटिव स्किल्स हो उसके अंदर या वो नॉलेज हो
0: KSA, जैसे कि अगर मैं टेक्निकल से हूँ तो मुझे शायद कोई मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट को ढूंढना चाहिए तो मेरी मार्केटिंग को हेल्प,
1: मार्केटिंग को
0: जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर
1: पाऊंगा, हाँ जो डिजिटल में अच्छा हो तो डिजिटल मार्केटिंग वाला हो और जो राइटिंग में अच्छा हो तो वो मतलब एक्सप्लेन कर सके कि हाँ कैसे कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करे, इस तरीके के तो ऐसे आपको लोग चूज करने हैं। तो परफेक्ट को फाउंडर के लिए तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए, फिर आप वो ऐसा पर्सन चूज करिए जो आपके गैप्स को फिल कर सके, मेन है टू फिल दोस गैप्स जो आपके अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से एक टीम डेवलप हो सकती है और फाइंडिंग अ को फाउंडर, राइट को फाउंडर इज जस्ट लाइक फाइंडिंग अ बिजनेस सोलमेट। तो इट विल टेक टाइम, टाइम लगता है कई बार लेकिन वर्थ है। तो मतलब कई बार क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोच के इन्वेस्ट हमें करना चाहिए कि हमें आगे इसका लॉन्ग टर्म जो है फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से ये है कि आप करिए तो अच्छा,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाले अगर को फाउंडर होंगे तो अपने आप बहुत सारे
1: काम आसान होगा, काम कम टाइम में, मीन्स टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी इसी को कहते हैं कि आप अपने काम को असाइन करें अपने टीम मेट्स के साथ। आप ही अगर सारा काम करेंगे तो आपके टीम मेट्स क्या कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ तो फिर प्रॉफिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है,
0: बहुत अच्छा आपने कहा, हाँ बहुत प्रॉब्लम आती है फिर एक कहीं ना कहीं ऐसे जाकर फिर डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं आपस में
1: और अगला भी
0: होती है।
1: टीम मेंबर भी कहता है कि यही करने देते हैं इसी को, जब हमें क्या करना, हम तो हैं टीम मेट्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये है। तो उसमें क्या है कि एक पे आता है सारा बर्डन भी आता है, स्ट्रेस भी होता है और उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: कहीं ना कहीं वो एहसास होता है कि मैंने शायद गलती कर दी है टीम बनाकर,
2: इसी बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: तो वही डिसीजन फिर आ गया ना, डिसीजन मेकिंग।
2: मैं मतलब बिल्कुल सही बात पे चर्चा हो रही है और ये सबसे बड़ा अहमियत, सबसे मेन, मतलब मैं अगर बोलूं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है तो वो यही है कि नेसेसिटी ऑफ इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले जो आइडिया मैंने पहले बोल रहा था तो उसमें क्या है कि आपको काफी रिसर्च करने की जरूरत है। एक तौर पे अगर आप एकदम से आपको सपना आया और बोला कि आप मैं कल ऐप बनाने को तैयार हूँ, सारा स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि केवल एप्स बनाने से ही सक्सेसफुल हो जाता है, केवल ऐसा नहीं है। और स्टार्टअप्स का मतलब ही एप्स होता है, एप्स इज नॉट इक्वल टू स्टार्टअप्स।
0: बिल्कुल।
2: तो इसमें बहुत रिसर्च और बहुत सारे इंटरेक्शंस की जरूरत है ताकि आपको नॉलेज पता चले। उसमें भी मंथन प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उसमें वाइट पेपर्स हैं, एविडेंस बेस्ड चीजें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो KPMG के साथ हमारी पार्टनरशिप है,
1: जिससे केस स्टडी करके, आगे
2: आप फिर आप उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो आगे, देन वो कंसेप्चुलाइजेशन से अर्ली स्टेज जा सकता है। ऐसी मूवमेंट होती है क्योंकि

0: आप यहीं पे आप आधे से ऊपर डुप्लीकेसी, आप यहीं पे आपका मतलब जो बैटल है एक तरीके से आप यहाँ पे तो उसको खत्म कर सकते हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को अपने अंतिम दौर में ले जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे।

0: सुनो शारदा एफएम के श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। हम स्टार्टअप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अपने अतिथियों के साथ सौमिल मुखर्जी जी और श्रद्धा अवस्थी जी के साथ हम इस चर्चा के अंतिम दौर में हैं। और श्रद्धा जी, मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं और जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताइए। जैसे बुक्स हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान का एक बहुत बड़ा साथी होता है, तो हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज रेफरेंस के बारे में बताइए जहां से उनको कुछ और जानकारी मिल पाए, वो मोटिवेशन ले पाए और ज्ञान ले पाए, या कुछ ऐसे और नए कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम शुरू करने वाले हैं शारदा में, या आपकी संस्था है, आप कुछ और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें।
1: जैसा कि सर ने कहा कि बुक जो रिकमेंड करनी, जो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या जरूरी है, नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जो है आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। आइडियाज हैं, सपोर्ट है, गाइडेंस है, तो ये सारी चीजें आपकी नेटवर्किंग से बहुत अच्छी हो सकती है। आप का जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी हो सकती है। यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल्स। तो टू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल्स, तो आपको एक बुक रेकमेंड करूंगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी।
0: जल्दी से दो लाइनें बस, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। जी, आप एक संरक्षिका शायद एक अभियान से जुड़े हुए हैं।
1: हाँ जी, मैं एक संरक्षिका, वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन है हमारे, CISF ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ संरक्षिका की। तो उसमें हम कई सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं वुमेन रिलेटेड टू वुमेन वेलफेयर और चिल्ड्रन वेलफेयर। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो उन आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस तरीके से इनिशिएटिव है। अभी हम जो है विद पैपस्वैप एंड स्टार्टअप हब यूपी स्टार्टअप के साथ जो है हम एक प्रोग्राम शुरू करना जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। तो उस प्रोग्राम का नाम जो है वो है फ्रॉम बाउंस बैक फेलियर, फ्रॉम बाउंस बैक टू कम बैक। तो कैसे हम अपने स्टार्टअप को, हम जो फेलियर हो जाते हैं या जो जिनको आइडियाज नहीं मिल पाते हैं, उनको कैसे हम फिर से आगे बढ़ाएं, कैसे हम आगे अपने स्टार्टअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम शारदा में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आप प्लीज ज्वाइन करिए। ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन।
0: तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर किसी ने इस डायरेक्शन में काम किया और वो रियली पैशनेट है और किसी वजह से वो अपने पहले इनिशिएटिव में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो जरूर उसे मदद मिलनी चाहिए कि वो दोबारा से कोशिश करे, दोबारा से खड़ा हो और वो आगे सक्सेसफुल रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस के लिए। स्वामी जी, मंथन पोर्टल और PSA से कुछ नई जानकारी जो आने वाली है, जो कुछ जिससे हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, आप बता पाए ताकि हमारे श्रोता और बाकी यूनिवर्सिटी के लोग उसके लिए तैयार रहें।
2: काफी चीजें हैं, कुछ साइंस और कम्युनिकेशन को की, हम जो ब्रांडिंग की बात करते हैं या आउटरीच की बात करते हैं, इससे हम कई सारे एक्टिविटीज करते हैं जो हम पार्टनर्स के थ्रू करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के साथ हमने किया है। नेटफ्लिक्स अपना आजादी की अमृत कहानियां के लिए, उनकी जो मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर जी जिनका ब्रेन चाइल्ड है ये प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने क्लाइमेट इनोवेटर्स के लिए 25 एपिसोड्स बनाने के लिए बताया था, जो उनका विजन था। तो उसमें से हमारे ऑफिस में पहले के दो सीजन थे, अभी थर्ड सीजन चल रही है, उसकी प्रोडक्शन है। उसके लिए अभी हमारे प्लेटफॉर्म से, ऑफिस ऑफ PSA से, हमने कुछ 10-11 स्टार्टअप्स की इनोवेशंस चूज किया है, एडुकेशन से, रिसाइकल से, देश के अलग अलग जगहों से हमने सोर्स किया है और उनको हमने सबमिट किया 50-60 इनोवेशंस। उसमें से वो 10-11 इनोवेशंस वो गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाएंगे। ऐसे ही और अमेजन प्राइम के साथ अभी हमने सॉफ्ट मीडिया लॉन्च इन्वाइट किया है, तो उसमें ग्रासरूट इनोवेटर्स की जो स्टोरी है, क्या चीजें उनकी जरूरत होती है मेंटरशिप की, जो हम बात करें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आती हैं, उसकी शोकेसिंग के लिए उन्होंने 10 स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं और वो इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे डायरेक्टली और उसके ऊपर रियलिटी सीरीज आएगी। ऐसी DD किसान के ऊपर से भी जुड़ा हुआ हमारा IFFCO की जो फंडेड प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ 16 एपिसोड्स जो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके के टेक्नोलॉजीज यूटिलाइजेशन होते हैं, प्लस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ भी हमारा हमारे टाइप्स है बी इंस्पायर्ड साइंस कम्युनिकेशन सीरीज के लिए. अगर आप आपके जितने भी स्टार्टअप्स हैं आपको इंडिया साइंस फेस्टिवल में वेलकम है जो बेंगलोर में 10 से 12 अगस्त के लिए है. अगर आपको जुड़ना है आप केवल मंथन प्लेटफॉर्म पे जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल पर, तो हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे. दे आर फ्री टू रजिस्टर एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्लेज इनोवेशंस आल्सो.
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ रही है, उसके सॉल्यूशन भी आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम भी आ रहा है, और जो लोग काम कर चुके हैं उन्हें आगे कैसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए, जानकारी उसकी कैसे सबको मिले, तो सभी चीजें एक ही जगह से मिल रही है, तो इससे अच्छा तो क्या ही होगा किसी के लिए.
2: मार्केटिंग की बहुत जरूरत है.
0: बिल्कुल, ये तो अब माना ही जाता है कि अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो जानकारी जब दूसरों के पास जाएगी तो वो और लोगों को मोटिवेट करेगा, और उसके खुद के लिए भी मोटिवेशन ही होता ही है. वो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है. मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे अतिथियों का. आपने अपना समय निकाला और आज यहाँ पर आए शारदा यूनिवर्सिटी में, और सुनो शारदा एफएम के हेल्प से हमने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया, प्रस्तुत कर रहे हैं. और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पैप्सो ऐप कंपनी का, दिव्यांशु जी का, जिनकी मदद से हम आप लोगों तक पहुंच पाए. मैं इस स्टार्टअप चर्चा श्रृंखला के अगले एपिसोड के लिए हम बहुत जल्द फिर से उपस्थित होंगे और विशेष अतिथियों के साथ. सुनते रहिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सुनो शारदा एफएम के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद.
3: अभी आप सुन रहे थे स्टार्टअप चौराहा. इस स्टार्टअप चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे सौमिल मुखर्जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वर्किंग एज कंसल्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दूसरे गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, PhD इन मैनेजमेंट एंड सर्टिफाइड NLP कोच, वाइस प्रेसिडेंट संरक्षिका द वुमन वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ CISF ग्रेटर नोएडा यूनिट. और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे डॉक्टर अमित सहगल, डायरेक्टर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन शारदा यूनिवर्सिटी. आशा करता हूँ ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा. 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. वक्त है आपसे अनुमति लेने का. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM. नमस्कार.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा?

0: है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे। एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। ए बाबू हाँ बोल दे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: दे नेड़े हो के भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। गच लागे म्यूजिक प्रोड्यूसर थिंकर लिरिसिस्ट अजमेर बलंबिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर 1 मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: है बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM इंकलाबी जिद्दी।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।